0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: स्किप।
1: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
2: ये है सिड ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 6.2. The Beat of Bollywood. The Big Breakfast brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
1: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
0: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
2: गुड मॉर्निंग, इट इज 6:33 ऑन द क्लॉक एंड चलिए देखते हैं इतनी सुबह कहां पर कितना ट्रैफिक है. 311 E11 एज यूजुअल आपको ट्रैफिक मिलेगा हेडिंग साउथ गोइंग टुवर्ड्स दुबई फ्रॉम शारजा. ज्यादा कुछ नहीं, 3 से 4 मिनट तक की देर एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बेरूत स्ट्रीट D62 इज ऑल्सो गेटिंग कंजेस्टेड एज एक्सपेक्टेड. वंस अगेन इंडस्ट्रियल एरिया 5 इन शारजा में हल्का फुल्का ट्रैफिक आपको मिलने वाला है S119 पर, ऑल्सो S112 एंड शारजा रिंग रोड S102 पर भी यूनिवर्सिटी सिटी की तरफ जाता हुआ ट्रैफिक आपको मिलने वाला है. 611 एमिरेट्स रोड पर south going towards Alavir also you'll find 3-4 minute ki there and things are heating up, congestion is building up at E44 Alkhel Road going towards Business Bay.
0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.

0: What a beautiful haunting track from Dhurandhar the Revenge, Shashwat Sachdev ka music, Satinder Sartaaj ki amazing awaaz right here on Big 106.2.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The beat of Bollywood.
0: अब सोलफुल मूड में आप आई गए हैं तो लेट मी काइंड ऑफ टेक इट वन नॉच फर्दर. या पैपॉन का नाम तो आपने सुना ही होगा. ही इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड सिंगर्स इन द फिल्म इंडस्ट्री. बट वो जब प्राइवेट काम करते हैं, यानी कि मतलब गजल वगैरह, स्पेशली गजल जब गाते हैं, दैट हैज गॉट लाइक अ सेपरेट फैन बेस ऑल टुगेदर. एंड ही इज काइंड ऑफ डिसाइडेड टू रेव अप द इंजन ऑफ दैट. ही स्टार्टेड न्यू फीचर ऑन यूट्यूब एंड इट्स कॉल्ड द लिविंग रूम, पैपॉन फ्रॉम द लिविंग रूम. तो वो उनके घर का जो लिविंग रूम है उसका अच्छा उपयोग कर रहे हैं. ही कॉल्स ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स, राइट, यू नो, फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री. वहाँ पर आते हैं, द काइंड ऑफ सिट डाउन एंड ही डज अ बैठक विद हिज बैंड, पैपॉन एंड हिज बैंड, एंड सिंग सम वंडरफुल न्यू अभी तक अनरिलीज्ड म्यूजिक. दिस वन इज अ कोलैबोरेशन विद इरशाद कामिल. इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, इट्स कॉल्ड अपने खिलाफ. इट्स यू नो द फर्स्ट एपिसोड ऑफ महफिल विद पैपॉन फ्रॉम द लिविंग रूम. दैट्स द एंटायर नेम, Mehfil with Papon from the living room. It's a beautiful, beautiful track. It's the perfect time to listen to it, 6:43 on the clock on this Wednesday. Ki subah isko suniye, bataiye kaisa laga.

बात है, व्हाट लिरिक्स, व्हाट म्यूजिक। अपने खिलाफ ही अपना किरदार मत बना, मैं पुल बना रहा हूँ, तू दीवार मत बना। ब्यूटीफुल। यानी व्हाट्स दिस वीडियो ऑफ मैपल्स विद द पैपॉन फ्रॉम द लिविंग रूम। आपको पहले तो जेलसी होगी कि यार आई विश आई वाज इनवाइटेड इन दिस वंडरफुल महफिल। दिस पंकज त्रिपाठी देयर, मयंक चैंग, लॉट्स ऑफ फेमिलियर फेसेस, सौम्या टंडन आउट देयर, इरशाद कामिल बगल में बैठे हुए हैं, पैपॉन गा रहे हैं विद हिज फैबुलस फैबुलस बैंड। एंड देन यू विल काइंड ऑफ रियलाइज कि यार व्हाई डोंट वी डू अ महफिल इन आवर ओन सोसाइटी। कुछ ऐसा हमारे यहाँ भी हमको करना चाहिए। इट्स अ ग्रेट ग्रेट आइडिया एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू एपिसोड 2 एज वेल, कमिंग अप इन जस्ट अ व्हाइल। ऊंचा लंबा कद, तेरा चम चम सरदारी। दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सेड। गुड मॉर्निंग।

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: सात बजकर 11 मिनट ऑन दिस वेंसडे की सुबह 3rd of June एंड टॉकिंग अबाउट 11 बजे से मैच शुरू होने वाले हैं फीफा वर्ल्ड कप के.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: यस, इट्स गोना बी लेट नाइट. सो लेट नाइट के इट वाज अ बिग प्रॉब्लम फाइंडिंग अ ब्रॉडकास्टर इन इंडिया. इतना सारा कंट्रोवर्सी हो गई बिफोर द वर्ल्ड कप इवन बिगन कि देयर वर नो टेकर्स, नो बायर्स फॉर द राइट्स. एंड देन फीफा भी अड़ा रहा कि यार नहीं, इतने दाम से कम तो नहीं कर पाऊंगा यार. पूरी प्रॉपर मांडवली चल रही थी, लेकिन फाइनली जी हैज गॉटन ऑन बोर्ड एंड दे आर गोना बी द ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर्स. इंडिया में लोग अब देख पाएंगे फीफा वर्ल्ड कप स्टार्टिंग ऑन द 11th of June. द फर्स्ट गेम इज हैपनिंग मेक्सिको वर्सेस साउथ अफ्रीका 11 PM रात 11 बजे. एंड देन द अदर टाइमिंग्स आर 6 AM कभी 5 AM. सो इट्स गुड फॉर यू एंड आई हु आर अर्ली राइजर्स, बट फॉर द रेस्ट ऑफ द पब्लिक हाँ काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी यार. 2 बजे रात के 2 बजे भी गेम्स होने वाले हैं. सो इट्स टोटली एट आपको प्रूव करना पड़ेगा दिस टाइम दैट यू आर अ बिग फुटबॉल फैन. बट व्हाट्स हैपनिंग दिस टाइम, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन लेस देन 10 days, बट 8 दिन में फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है. सो दिस टाइम येस बैक टू डिफेंड द टाइटल फॉर अर्जेंटीना. लियोनेल मेसी इज गोना बी प्लेइंग हिज 6th वर्ल्ड कप. ऑल्सो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ही इज 41 years old, ही इज going to feature for Portugal. And the big absence is going to be Luis Suarez, not going to be for Uruguay. And there's a great comeback on the cards as well. Munich, Bayern Munich ke goalkeeper jo hai Manuel Neuer, he's 40 years old and he helped Germany win their 4th World Cup in 2014. He's come out of international retirement for this edition of the World Cup. So that's going to be very, very interesting to see. England in 1966 se वर्ल्ड कप नहीं जीता है. देव लेफ्ट आउट सम ऑफ देयर स्टार्स. सो इट्स ऑल हैपनिंग, इट्स ऑल हैपनिंग. अ फ्यू डेज आफ्टर द IPL गॉट ओवर, यू हैव द फीफा वर्ल्ड कप टू लुक फॉरवर्ड टू. सो देखते हैं क्या होता है, कौन जीता है इस बार. विच टीम आर यू सपोर्टिंग? गॉट अ फेवरेट? देन लेट मी नो, गिव मी अ कॉल 800-1062 पर. कमिंग अप इन जस्ट अ वाइल मैं वापस आऊंगा. कमिंग अप ऑन द 12th of June ये फिल्म रिलीज होने वाली है. इसमें से मस्कारा is coming up in just a while. This is The Big Breakfast with me, Sid.

0: SelfDrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: 7:36 on the clock on this 3rd of June, and every day we find something or the other to celebrate. Kuch na kuch ho raha hota hai, kuch day that makes it special. Har din special hota hai. That is the underlined bold italic that we do every day in the morning. Aur aaj it is the day to celebrate.
2: Chandi ki cycle, sonne ki seat.
1: चांदी की साइकिल सोने की सीट. अगर आप भी एक साइकिलिस्ट हैं, टुडे इज द डे टू सेलिब्रेट, बिकॉज टुडे इज द वर्ल्ड द इंटरनेशनल बाइसिकल डे. साइकिल को सेलिब्रेट करने का दिन है. एंड आई वाज थिंकिंग अबाउट व्हाट माय फर्स्ट बाइसिकल वाज. देयर व्हेनेवर यू थिंक अबाउट अ साइकिल, आई मीन आजकल तो कम ही लोग चलाते हैं, उस पर ज्यादा कपड़े ही सूखे होते हैं. बट या विच वॉज द, डू यू रिमेंबर द ब्रांड ऑफ योर फर्स्ट एवर बाइसिकल? या बाइसिकल से थोड़ा नॉस्टैल्जिया तो होता ही है. सो थोड़ा टेक अ ट्रिप डाउन मेमोरी लेन एंड लेट मी नो अगर आपको याद आ रहा है कि वो कौन सी साइकिल थी, मेक क्या था, ब्रांड क्या था. अगर आपको याद है वो पहली साइकिल जो आपने खरीदी थी, दैट यू ओन्ड, व्हाट वाज द ब्रांड ऑफ द फर्स्ट बाइसिकल दैट यू ओन्ड, अगर याद आ रहा है. इफ यू रिमेंबर गिव मी अ कॉल 800-1062 पर.

0: 9:40 on the clock. Lots of answers. I got lots of BSA SLRs. I've got Sameer with me on the phone line. Sameer, good morning.
1: Good morning.
0: Kya haal chaal hai, sab badhiya?
1: Sab badhiya.
0: Happy World Bicycle Day. Bicycle ka naam lete hi ek aapki pehli wali cycle yaad aayi ki nahi aayi aapko?
1: Bahut acche se yaad aayi.
0: So bataiye, what was the make of your? Meri pehli bicycle was a BSA Champ. Pata hai wo L shape wali, safed L shape wali seat thi. And it was नया नया मार्केट के अंदर आया हुआ था एंड यू कुड एडजस्ट द हाइट ऑफ द सीट यार काफी फैंसी वाली थी आपकी पहली साइकिल कौन सी थी
1: मेरी पहली साइकिल जो थी वो A1 जिप्सी थी
0: A1 जिप्सी
1: हाँ जिससे सबसे पहले सस्पेंशन आया था और उसको मैंने कर्नाटक में लाया था मुंबई से
0: एक मिनट क्या सस्पेंशन आया था
1: हाँ वो जो सीट के नीचे जो आता है सस्पेंशन
0: अच्छा वो स्प्रिंग सस्पेंशन राइट हाँ
1: उसको मैंने मुंबई से खरीद के लाया था कर्नाटक तो इसकी वजह से मुझे सही से याद है कि वो साइकिल का मेक एंड एवरीथिंग
0: स्पेशली यू वेंट टू मुंबई एंड बॉट दिस साइकिल ब्रॉट इट टू कर्नाटक दैट इज द क्रेज दैट वी हैड फॉर बाइसिकल्स ग्रोइंग अप ना मतलब फिर उसके बाद ये इसी A1 जिप्सी पे आप स्कूल जाते थे शो ऑफ करते थे या क्या था
1: ये डेली राइड थी मेरी उस टाइम की
0: राइट सो आपके सारे फ्रेंड्स वे जेलस ऑफ यू कि यार ओ माय गॉड यार मतलब क्या इंटरनेशनल साइकिल लेके आया स्कूल यार
1: नहीं लेकिन सबसे पहली थी एंड आई कुडंट फाइंड समथिंग लाइक सेम हमारे लोकेलिटी में देयर वर लॉट्स ऑफ अदर ब्रांड्स लाइक BSA माउंटेनर एंड ऑल दोस थिंग्स
0: राइट
1: बट दिस वाज द ओनली साइकिल व्हिच वाज इन आवर लोकेलिटी
0: Amazing, man. I mean, when it comes to bicycles, all of us are such fans and kind of brings back so many memories, right? So, और खास करके जब वो chain school के रास्ते में chain जब उतरती थी ना, तो इतना frustration होता था. And how do you explain to the teacher कि यार chain उतर गई? But yeah, I mean, cycle को हम लोग याद कर रहे हैं. Thank you very much for you know the A1 Gypsy nomination. डंडे वंडे उसके सब सीधे थे, handle वैंडल सब सीधा या कुछ टेढ़ा था, something fancy or just the suspension?
1: जब वो आया तो वो सीधा था फिर बाकी तो मैंने टेढ़े कर दिए तो वो साउंड भी
0: right.
1: साउंड भी आया करता था पहले आप अगर यू रिमेम्बर द इंडिकेटर्स विद द साउंड एंड ऑल
0: व्हाट योर बाइक हैड एन इंडिकेटर इन इट
1: या सम दैट टू हैड गॉट इट फ्रॉम मुंबई इटसेल्फ
0: ओ भाई मतलब ये कुछ अलग ही इसको मेरे को गूगल सर्च करना पड़ेगा ये A1 जिप्सी क्या है
1: उस टाइम का मेरे लिए
0: हां सॉरी
1: वो उस टाइम का मेरे लिए आफ्टर मार्केट था मैंने सब लगाया था एक्स्ट्रा
0: दैट इज Crazy, मतलब you are one of the biggest bicycle fans है मतलब indicator वाली bike तो मैंने कभी सुनी नहीं थी उस time पे there it was like not possible और पता नहीं suspension वगैरह तो वो
1: one which was available from Hero
0: yeah
1: and I remember but this was I had bought it from Mumbai that indicator and if I used to attach to the brake when I used to brake it the light used to glow
0: That sounds really fancy, man. Really fancy. Absolute pleasure talking to you. Thank you very much for sharing that with me, Sameer. And happy World Bicycle Day to you. Agar aapko yaad aa raha hai ki which is the first ever bicycle brand that you owned? I mean, everybody has a story to tell. Jo pehli bike hoti hai, uska ek alag hi connection hota hai har kisi ke saath. So, pehli bicycle aapki, pehli cycle, kaun si thi? Wanna share it with me? Give me a call. 800-1062 par.

0: Justine Royal with Nasdeni Sari right here on The Big Breakfast with me, Sid. It's the 3rd of June. We're celebrating World Bicycle Day. And Akib bhai mere saath phone line pe maujood hai. Akib, good morning.
1: Good morning, sir. How are you?
0: Happy World Bicycle Day to you. Kyun hai aisa, Akib, ke bicycle ke naam itne technical hote hain, ke Formula One ki gaadi bhi sharma jaye yaar. To Akib ke jo bachpan ki cycle thi, uska naam bhi kuch zabardast turbo blast. Kya, what was the name of your cycle?
1: Actually, it's a Hercules Turbo Drive.
0: Hercules Turbo Drive.
1: Yes.
0: Matlab, टर्बो का नामो निशान नहीं इस साइकिल के अंदर, लेकिन फिर भी टर्बो ड्राइव. बट इट यू नो मेन जो टारगेट ऑडियंस है वो हम बच्चे होते थे, एंड ये नाम वाम सुन के बड़ा अच्छा लगता था, टर्बो ड्राइव. एंड यू नो फिर वो आ गया, ये शॉर्ट फॉर्म्स आ गए, याद है आपको ATB? ATB was all terrain bike. फिर वो MTB आ गया, मल्टी टेरेन बाइक. बट Akib, tell me something about your cycle or some story that you have with your first cycle.
1: Actually, that bicycle was my entire life memories. And the thing is, I was a millennium, like I am a millennium. Each and every millennium child was about to make some dramas and not having interaction with parents until and unless you get your wish comes true. तो ये चीज होती थी कि जिद करना है, हमें चीज चाहिए.
0: यू आर एब्सोल्युटली राइट यार. मतलब उस टाइम पे पूछना चाहिए, पूछना नहीं पड़ता था पेरेंट्स को कि बच्चे क्या चाहिए. वो टॉप आंसर तो बाइसिकल था. अच्छा, वो नहीं दे सकते तो फिर मैं बताता हूँ और क्या आपको. बट द टॉप आंसर वाज ऑलवेज प्लीज गेट मी अ बाइसिकल, मेरे को एक साइकिल चाहिए प्लीज.
1: जी जी जी हाँ, ये टाइम पे खाना नहीं खाना होता था, यही था. मतलब आज के जमाने में ऐसा नहीं है, लेकिन जब मिलेनियम्स का ऐसा ही था.
0: Absolutely. For us millennials, yes. Mother, 90s children, so yeah, definitely the bicycle is one of our best, if not our best friend, one of the best friends that we've ever had. Yeah, usme itne zyada kisse, chahe wo school ho, chahe wo shaam ko khelne ka time ho, chahe wo you know somebody who mentioned their first girlfriend also. Did you apne bhi girlfriend ko cycle pe kabhi aisa kuch nahi?
1: I was single.
0: Uske baad yaar bike wife pe ghumaye bhai, Akib bhai ne cycle pe thodi, matlab bike pe hero splendor vendor pe. So, Akib bhai,
1: actually my girlfriend was my bicycle only, and we were in a joint family. And हम लोग, मेरी एक controversy बहुत चलती थी कि ये अपनी bicycle को girlfriend की तरह रखता है, the way I was cleaning each and every time, उसको सजाना होता था, हर चीज लाके उसके ऊपर, मतलब वो स्टिकर्स वगैरह वो लगाता था.
0: नेक्स्ट लेवल भाई, आपका तो रोमांस चल रहा है साइकिल के साथ यार. मतलब दिस इज प्रो मैक्स Akib भाई.
1: एग्जैक्टली.
0: प्लीज टेल मी, अब आपकी शादी वादी हो गई, सब कुछ सही?
1: नहीं अभी तो नहीं,
0: अभी भी सिंगल हो?
1: एक हाँ, 6 months आया. Actually, I'm committed already.
0: You're committed already. So not to your cycle, right? To
1: no, no, no. Just a girl.
0: All right, very good. Chalo, I'm very relieved to hear that. But maza aa gaya aapse baat karke Akib. Thank you so much for sharing those details with us, those stories with us. I've also got Shaida with me on the phone line. Shaida ji, good morning.
2: Hi, good morning. Sweta.
0: आप मुझे बताएंगे शायदा जी कि जब आपको बचपन में साइकिल चलानी होती है, लेकिन साइकिल आपकी साइज से बहुत बड़ी है, पापा की साइकिल है, तो उसको किस स्टाइल में चलाया जाता है?
2: कैची
0: स्टाइल याद दिला दिया शायदा ने मुझे यार. अच्छा मुझे बताओ, रेडियो पे पीपल हु आर नॉट मिलेनियल्स, दे आर जेन जी लिस्निंग टू अस राइट नाउ, कि कैची स्टाइल कैसे चलाते हैं बताओ.
2: नॉर्मल जो साइकिल है उसमें बीच में एक डंडा है और आप उसके राइट या लेफ्ट साइड, वॉट एवर योर साइड, उसमें से पावर निकाल के ऑलमोस्ट हाफ ऑफ योर बॉडी इज ऑन द रोड साइड एंड यू आर जस्ट लिविंग सम मोमेंट्स ऑन द पेडल्स बिकॉज रेस्ट योर लेग इज जस्ट पुशिंग
0: डाउन. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल इज कि आपका जो पेडल है ना, वो पूरा गोल नहीं घूमता है, और उसको गोल घुमाने की जरूरत है, तो वो थोड़ा आगे फिर थोड़ा पीछे, फिर थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, फिर थोड़ा आगे थोड़ा पीछे,
2: और एक पैर ऑलमोस्ट रेडी है कि कभी भी गिरे तो नीचे उतर जाना है, साइकिल छोड़ देना है.
0: तो आपने कैची साइकिल चलाते हुए कितनी बार गिरी है आप बताइए.
2: अरे मेरे साथ एक्चुअली बहुत बड़ा ये है कि मैं कभी नहीं गिरती हूँ. मैं साइकिल फेंक दूंगी, उसको कुछ भी हो जाए, वो नाली में जाए, वो रोड पे जाए, वो ट्रक के नीचे जाए, आई डोंट केयर.
0: वैसे भी पापा की साइकिल है, आपकी थोड़ी है.
2: यस एग्जैक्टली. तो मैं बहुत छोटी हाइट की थी एंड एवरीबॉडी सेड साइकिल चलाओ, हाइट बढ़ जाएगी, हाइट बढ़ जाएगी. ओके विल ट्राई. तो डैड की साइकिल में कैसा होता था, पहले साइड स्टैंड नहीं होता था, वो मेन स्टैंड होता था ना, जिसपे आप कितने भी किलोमीटर चलाओ कहीं नहीं पहुंचोगे। तो पापा बोलते थे आपको हाइट बढ़ानी, चलो इसी पे बढ़ा लो, बिकॉज बहुत बड़ी साइकिल है, यू कैन नॉट हैंडल उसका वेट, आपका टायर आपकी हाइट के ऑलमोस्ट इक्वल आ रहा है, यू आर सो स्मॉल। तो लाइक नहीं नहीं नहीं आई विल ट्राई। तो पैडल चलाते चलाते कब वो साइकिल स्टैंड पे से नीचे आ गई और मैं साइकिल के साथ साथ आगे जा रही हूँ, एंड देयर इज नोबडी टू होल्ड मी। जैसे ही रोड पे मैं साइकिल के साथ हूँ, लाइक थोड़े सेकंड तो अच्छा लगा कि मैंने साइकिल चला ली, और उसके अगले सेकंड रियलाइज हो गया कि अब नहीं हो पाएगा। साइकिल गई सीधे नाली में, मैं साइड उतर के हाथ बांध के देख रही हूँ, सब साइकिल गई। माय डैड इज लाइक वहां तक कैसे पहुंची, लाइक अच्छे से चलाई थी मैंने, पर वो वहां तक तो अब नहीं था।
0: मैंने तो अच्छे से चलाई थी, वो साइकिल की गलती है कि वो नाली में जा रही
2: है, चली गई,
0: मुझसे पूछ के थोड़ी करी है नाली के अंदर, वो साइकिल आपकी साइकिल खराब है पापा। मैं कुछ
2: एग्जैक्टली, फिर पापा ने कहीं से छोटी सी साइकिल लाई और मुझे नाम तो नहीं पता, वी यूज्ड टू कॉल हर अदि।
0: व्हाट,
2: तो वो
0: एक मिनट, योर साइकिल हैड अ नेम?
2: Yes, so I used to call her Adi because वो मुझसे भी छोटी साइज की थी। उस साइकिल पे वो भारी सा स्कूल बैग जिसमें 50 किलो का वजन होता था, उसको पीछे स्टैंड पे लगा के आई यूज टू पेडल 1000 टाइम्स सो दैट मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रही हूँ, बिकॉज वो बहुत ही छोटी साइकिल थी।
0: मुझे आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस गाइज, मैं टुडे इज द वर्ल्ड बाइसिकल डे, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द काइंड ऑफ आंसर्स दैट आई हैव गॉट दिस मॉर्निंग। किसी की मतलब वर्चुअल शादी हो रही है साइकिल के साथ, रोमांस लव अफेयर चल रहा है, एंड यहाँ पर शायदा ने एक निकनेम भी दे दिया, देख घर का नाम है साइकिल का, नहीं नहीं उसका असली नाम तो हम तो जानते नहीं है, लेकिन उसे हम प्यार से क्या बुलाते हैं, आदि,
2: बहुत छोटी हाइट की थी। एंड देन मैं जब सीख गई साइकिल तो आई यूज टू शो ऑफ एवरीबॉडी, यू नो जब हैंडल छोड़ के हम चलाना सीखने जा रहे हैं तो सारे बड़े बॉयज वैसा कर रहे हैं, भैया लोग कर रहे हैं, तो आई वाज लाइक मैं भी करने वाली हूँ, पापा देखो, और फिर मैं धड़ाम, एंड जो फिर पहली बार जब लगी पापा ने कहा हो गया स्टंट, अभी आर यू डन।
0: What a cute story that is, yeah. Shaida, thank you so much for calling in and sharing, you know, those stories with us.
2: Yes, we have so much fun. And my kids listen all the stories today and they say, Mama, you had such an exciting childhood. Why don't you let us go anywhere with our cycle? Yeah. Like, where will you go?
0: And it would be, while narrating the story, it would be like you introducing them to your friend Adi, right? It's not like any vehicle, like, you know, something like that. It's not a machine. It's like
2: very,
0: a friend.
2: It's got very small. और फिर जब हम थोड़े बड़े हो गए पर साइकिल तो उतनी थी, एंड देन माय यंगर सिस्टर वुड से कि मुझे भी बैठना है, लाइक डबल सीट भी हम उस अद्दी पे चला सकते थे, इट वाज सो स्मॉल साइकिल, बट एवरीबॉडी ऑन द रोड विल सी कि भाई क्या भाई बहन की जोड़ी है, ये इतनी सी साइकिल पे भी दो लोग बैठ के जा रहे हैं, दो बैग लेके जा रहे हैं।
0: आई लव लव दैट स्टोरी, आई लव, मैं पहुंच गया, मैं खुद पहुंच गया आपके घर में, आप मैं देख पा रहा हूँ अद्दी, आई एम एबल टू काइंड ऑफ रिलीव योर चाइल्डहुड मेमोरीज अलोंग विद यू, दैट्स द मैजिक ऑफ बाइसिकल्स, राइट? सो शायदा थैंक्स सो मच for calling in and sharing those stories with us.
2: Thank you so much for this call.
0: Happy World Bicycle Day. Like I told you, I was not prepared with the kind of answers that you guys... मतलब अलग ही सीन चल रहा है साइकिल के साथ। जान से गुजरते coming up in just a while. Khan Saab on the vocal, Shashwat Satyadev का music from Dhurandhar. This is The Big Breakfast with me, Sid. Big 106.2.

0: हाँ साहब सिंगिंग जान से गुजरते हैं। आजकल जो गेमर्स हैं उनका भी यही एंथम बन गया है, जान से गुजर जाएंगे लेकिन गेमिंग करना नहीं छोड़ेंगे।
1: Two splendid years of insurance market metro station from Sheikh Zayed Road to your screen, I am always nearby. Insurance market.
2: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: कभी-कभी समझ में नहीं आता कि how do I react to a particular piece of news? I mean, should I be bothered, concerned about it, or should I celebrate it? ऐसा ही कुछ हुआ चाइना में एक इंटरनेट कैफे में। There's this youngster who was gaming. वो काफी intensely वो gaming कर रहा था, and एक waitress आई and गलती से उसकी पीठ के ऊपर गर्मा गर्म चाय उसने गिरा दी। लेकिन उस गेमर ने क्या किया? कुछ नहीं किया। दैट इज द न्यूज स्टोरी। डिड नॉट फ्लिंच, डिड नॉट लुक अप, डिडंट इवन पॉज, ही कंटिन्यूड हिज गेमिंग एंड वेटर्स पीछे से बोलती रही, सॉरी सर, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आपके पीठ पे अगर छाले पड़ गए तो? तो गेमर ने जवाब दिया बिना मुड़े, हाँ कोई बात नहीं, छाले पड़ते हैं तो पढ़ने दो। उसने आइस ऑफर की, उसने मना कर दिया। हिज ओनली रिक्वेस्ट वॉज प्लीज एक और कप चाय मिलेगी, ये तो गिर गई मेरे पीठ पर। ही हैड अ किल टू सिक्योर एंड ही वुड सिक्योर इट एट ऑल कॉस्ट। एंड इट्स गॉट मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज दिस पर्टिकुलर वीडियो ऑन सोशल मीडिया एंड यूजर्स एंड पर्टिकुलरली गेमर्स आर कॉलिंग इट लेजेंडरी डेडिकेशन। कुछ देर में कमिंग अप है जवानी तो इश्क होना है का टाइटल ट्रैक right here on the Big Breakfast with me, Sid. Also coming up, a chance to you for you to flex your Bollywood muscle and walk away with two open movie tickets in the Big Bollywood Quiz.

0: 8:48 on the clock on this Wednesday. Ki subah. This is The Big Breakfast with me, Sid. It's now time for you to win 2 open movie tickets. Time for the big Bollywood quiz. Flex कीजिए अपना Bollywood muscle. Proof कीजिए कि आप थोड़े बहुत हल्के फुल्के भी अगर आप Bollywood fan हैं तो ये मौका आपके पास. ज्यादा difficult question नहीं. Today we are celebrating the World Bicycle Day. Yeah, बहुत सारा nostalgia सुबह से and some amazing bicycle stories we've been talking about. So let's put in a Bollywood का तड़का in the celebration this morning. And एक पूरी की पूरी फिल्म है बॉलीवुड में जो कि साइकिलिंग के टॉपिक पर बनी है. व्हाट इज दैट फिल्म? इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. इट्स वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स. इसका क्लाइमैक्स सीन मैं आपको सुनाता हूँ कि बाइसिकल कमेंट्री इस फिल्म ने इंट्रोड्यूस की थी. तो ये जो कमेंट्री आप सुनेंगे कौन सी फिल्म में थी बताइए. फिल्म का नाम अगर आपको पता है गिव मी अ कॉल 800-1062 पर.
1: शेखर मल्होत्रा चल पड़े हैं दूसरे लैब के लिए. संजय लाल अब आ रहे हैं सातवीं पोजीशन पे.
0: लेजेंडरी राजपूत वर्सेस क्या था. देयर वाज अ जेवियर्स आल्सो एंड देयर वाज अ मॉडल कॉलेज आल्सो. शेखर एंड संजू. संजू टॉप गियर से आपको दैट साउंडेड बिट लाइक संजय दत्त. वो संजय नहीं अलग संजू थे. सो संजू टॉप गियर से आपको कौन सी फिल्म याद आ रही है वर्ल्ड बाइसिकल डे पर. गिव मी अ कॉल 800-1062. दैट्स अ नंबर 800-1062 पे सही जवाब अगर आप देंगे यू कुड विन 2 ओपन मूवी टिकट्स इन द बिग बॉलीवुड क्विज.
2: बड़े मोरनी जिधर नु जाओ मुंडे तक तेंदे ने जी.
0: From है जवानी तो इश्क होना है. Wow, coming up in just a while. This is the big breakfast with me, Sid.
3: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते. जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती.
4: नाम है Sid. Sid on the big breakfast. Only on big 106.2. The beat of Bollywood. The big breakfast brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy. The Big Jill.
5: All my favorite music in one spot.
4: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae.
6: A car for rent at just 899 dirhams per month. Nothing even comes close. No ownership, no commitment. Just drive. Book now on SelfDrive.ae. Your car, your way.
4: Big 106.2. That's My Song by E. And.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: मिक्सिंग विद फोन राइट ऑन बिग 106.2। कुलभूषण खरवंडा ने विलायती साइकिल खरीदने के लिए कुछ पैसे जमा कर रखे थे और घर के छोटे निठल्ले बेटे आमिर खान ने वो पैसों से पूजा बेदी के लिए हार खरीद लिया। एंड दैट इज द मेन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द फिल्म दैट वी टॉकिंग अबाउट ऑन दिस वर्ल्ड बाइसिकल डे। आई गॉट मितुल विद मी ऑन द फोन लाइन। मितुल, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। हाउ यू डूइंग?
1: गुड मॉर्निंग सेड, आई एम गुड, हाउ आर यू?
0: वेरी वेरी गुड। या बताओ सही जवाब क्या है, एंड इज दैट वन ऑफ योर फेवरेट फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम?
1: यस इज दैट सो। Like the movie concept जो था उसमें, like it is amazing, like college time, young boys जो like passion था, like we are thinking about like हमारी college भी ऐसी होती थी, but हमारी college कभी ऐसी नहीं हुई है।
0: Exactly, you're absolutely right, यार, क्योंकि मैं भी ना school में था जब ये film release हुई, and I was like यार college life से ऐसी होगी, इतनी cool होगी, and फिर उसके बाद इस film की वजह से disappointment ही होता था college के अंदर कहते, right? So what is the correct answer?
1: जो जीता वही सिकंदर।
0: जो जीता वही सिकंदर is the correct answer. दो ओपन मूवी टिकट्स आपने जीत लिए हैं। एंड पीपल रिमेंबर द साइक्लिंग सीन्स, एंड आमिर खान के बड़े भाई का रोल किसने किया था, याद है?
1: आई डोंट नो हिज नेम, बट उनका जो एक्सीडेंट हुआ था मूवी में, व्हिच वाज वेरी वर्स्ट ऑन दैट टाइम, लाइक जीतने के लिए कुछ भी कर लेते थे।
0: दीपक तिजोरी ने उसे धक्का मार के पहाड़ी से नीचे गिरा दिया था।
1: दीपक तिजोरी ने उनको धक्का मारा था।
0: भाई का नाम था मामिक, एंड आई थिंक उस टाइम पे मामिक की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी यार।
1: बिकॉज़ उनका जो बॉडी बिल्डअप था, व्हिच वाज लाइक अमेजिंग, ही वाज लाइक आई थिंक सो बॉक्सर टाइप था उनका बॉडी, राइट?
0: एग्जैक्टली यार। और फिर वो चार कॉलेज थे, आई थिंक जेवियर्स, मॉडल, राजपूत, और एक चौथा कॉलेज भी था कुछ उसमें, एंड देन देयर वाज दिस म्यूजिकल जुगलबंदी आल्सो, एक कॉन्टेस्ट था ऑन स्टेज, एंड व्हाट अ फिल्म इट वाज यार। मतलब पहाड़ों पे शूटिंग हुई थी,
1: सोसाइटी एंड ऑल, लाइक वी आर मिसिंग, लाइक सोसाइटी कहां पे रहेगी, द हाउस ऑफ देम।
0: या
1: शोले मूवी में भी सेम लाइक कॉन्सेप्ट था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
0: शोले में
1: जो हाउस का, जो तुम लोग का जो हाउस था अप एंड डाउन वाला, आमिर खान का जो घर था, वैसे जो शोले में भी था।
0: अच्छा, मतलब दो माले का घर था। कहां आपने जेजे कंपेयर कर दिया शोले से?
1: नहीं नहीं नहीं, कॉलेज नहीं, आई वाज टॉकिंग अबाउट सोसाइटी, द कम्युनिटी।
0: राइट राइट राइट, दो माले का जो घर था उसका।
1: हाँ वही।
0: आपने तो आयशा झुलका को जया बच्चन बना दिया यार, मतलब
1: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।
0: घोड़े और साइकिल को कंफ्यूज मत करो, बट चलो कांग्रेचुलेशन यार, दो ओपन मूवी टिकट्स आपके हो गए, ऑल थैंक्स टू हम सबके बचपन की फेवरेट मूवी JJWS, जो जीता वही सिकंदर, एंड हैप्पी वर्ल्ड बाइसिकल डे टू यू।
1: Thank you so much, you too also.
0: Take care, Mithul. Enjoy yourself at the movies. Don't forget, roz subah ye mauka aapke paas to get your hands on two open movie tickets in the big Bollywood quiz. Big 106.2.

0: यार ऐसा क्यों होता है कि दुनिया भर में बाकी सारी कंट्रीज के जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होते हैं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होते हैं, वो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस के होते हैं, स्किल के होते हैं, हमारे कैसे होते हैं कि सबसे लंबी मूछें, सबसे लंबे बाल, सबसे लंबे नाखून, या फिर एरोप्लेन को दांत से खींच रहे हैं हम लोग?
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: There's a new Desi Guinness World Record. This guy called Sunil Joseph, and he has created a Guinness World Record for amassing the largest collection of paper cups on earth. Banda paper cup collect karta hai. 858 different kinds of paper cups he has collected from 31 different countries. Tiny 5 ml se lekar 500 ml tak ke bade wale cups Sunil bhai ne collect kiye. He's a 57-year-old social worker, and it's not just paper cups. Ye 5 saal ki umar se collect kar rahe hain. And razor blade, wrapper se lekar, stamps, coins, matchbook stickers. He just loves collecting. And his funda in life is follow your passion and make it like, and don't shy away from it. Jo bhi aapka passion hai, do it 100%. Kyun karte log aisa yaar? Matlab it's I find it quite amazing. Ho sakta hai ki he's trying to fulfill his parents' wish. Na kabhi bachpan mein, jaise har desi maa-baap kehte hain ki mera beta bada hokar collector banega. Usne kaha, haan, theek hai. मैं बनूंगा कलेक्टर बनूंगा, बट नॉट इन द वे दैट यू आर एक्सपेक्टिंग.
2: ओ तेनू सूट सूट करदा, ओ तेनू सूट सूट
0: करदा. कुड़ गंदावा विद द सूट सूट कमिंग अप इन जस्ट अ व्हाइल. दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड.

0: गुस्से से बोलेगी नहीं जाऊंगा, प्यार से बोलेगी मर भी जाऊंगा। इस जमीन और इस आसमान से परे जहां ना वक्त ना तुम्हारे मेरे सिवा कोई और, बस एक जज्बा हो कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 9:30 on the clock. It's the 3rd of June, 8 days away from the start of the FIFA World Cup.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: रात के 11 बजे यहाँ UAE time शुरू हो जाएगा. पहला game is going to be Mexico because one of the host countries playing South Africa on the 11th of June. And one very unique innovation that's going to happen this time, that जो FIFA का जो football है, football the ball itself, it'll need to be plugged in and charged. इस बॉल को चार्ज करना पड़ेगा. It's got a 14-gram sensor embedded in one of its panels, और ये sensor 500 hertz पे operate करता है. It'll capture and transmit motion data 500 times per second, and precise detection of ball contact, real-time tracking, speed, sprint, trajectory, position, ये सब कुछ measure करेगा. And इसका जो data होगा, ये ball से जो data मिलेगा, combined with system of cameras placed throughout the stadium, and साथ मिलकर ये एक 3D मॉडल, रियल टाइम 3D मॉडल को जनरेट करने वाले हैं ऑफ द मैच. गोना ट्रैक द प्लेयर्स एंड द बॉल एट द सेम टाइम. एंड रिपोर्ट्स आर सेइंग ये जो टेक्नोलॉजी है ना, इससे प्रिसिशन एंड VAR के डिसीजंस जो हैं ये ज़्यादा प्रिसाइज होंगे, ज़्यादा अच्छे होंगे. ऑफ साइड्स, गोल लाइन जजमेंट्स, हैंड बॉल्स एंड अदर क्लोज कॉल्स. बीच में चार्ज खत्म हो गया तो क्या होगा ये पता नहीं, बट हाँ, देखना ये है कि जो फुटबॉल के साथ साथ एक्टिंग के लिए फुटबॉलर्स जाने जाते हैं वो कम होगा कि नहीं दिस टाइम. बिग

0: खिलाने पिलाने और जमीन बाहर पसारे बोल रही थी कि हाउस मार्क कि तू मुझे मिला नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे प्रिया के प्यार का पैराशूट भी स्लोली स्लोली स्लोली।
1: बिग 106.2

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, GoChat के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। GoChat ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

माता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा। सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: 101.2 The Beat of Bollywood. Henna Speedy Hair Color, covering the changes in the world and covering changes in your hair right now. This is Fan Network News from the BBC.
1: BBC News with Roisin Hasty. Russia says its air defences have been responding to a Ukrainian drone attack around St. Petersburg. The Leningrad regional governor said 50 had been brought down. Unconfirmed Ukrainian sources say an oil terminal was hit. Microsoft has unveiled a new quantum computing chip. It says Majora 2 is 1,000 times more reliable than its predecessor. Quantum computers may be able to solve problems that would take conventional computers thousands of years. Tropical storm Jiangmi is ripping through Japan's main island Honshu on its way towards Tokyo with winds of up to 90 kilometres an hour. Power to nearly 60,000 homes has been cut. Polls have closed in California in a primary election to determine who will run for governor in November to replace Gavin Newsom. With 61 candidates, the favourite is the Democratic former health secretary Javier Becerra. A study has found that doing 90 minutes to 2 hours of strength training a week can reduce the risk of an early death. Researchers found that regular weight or resistance training reduced the risk by 13%. Scientists in Italy studying the frozen body of a man more than 5,000 years old hope the ancient bugs they found on and inside him will help explain how so-called friendly bacteria have evolved. And the American R&B singer Peebo Bryson has died at the age of 75. During a career spanning five decades, he was best known for two Disney classics, Beauty and the Beast and A Whole New World from Aladdin. BBC News.
0: Fan Network News from the BBC. Great coverage, vibrant colour, natural finish, all in just 5 minutes. Henna Speedy Easy Hair Colour, made in Italy. Big 106.2.
2: जब वो चले तो सब देखते रह जाए और जब वो रुके तो वक्त बीत जाए और वो जब हंसेगी उसके सामने झुक के अपनी बाहें फैला के कहूंगा आई लव यू.
0: When the clock strikes sass, she walks in. Fashion, films and fun. The Big Mix with Zohra on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
3: हाँ जी, हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग. ज़ोहरा के साथ हो आप राइट ऑन बिग 106.2. वी आर अ पार्ट ऑफ फन एशिया नेटवर्क. आई कीप यू कंपनी आने वाले 4 घंटों के लिए फ्रॉम 10 ऑल द वे अंटिल 2 ऑन द बिग मिक्स. आज फिलहाल हम बात करेंगे, आई लव दिस, यू नो, जब ऐसा कोई रिपोर्ट आती है, जब ऐसे कोई आर्टिकल आते हैं वेयर यू नो पीपल आर रैंक्ड और कंट्रीज आर रैंक्ड और स्टार साइंस आर रैंक्ड. मुझे बड़ा मजा आता है वो पढ़ने में, इवन दो यू माइट नॉट बिलीव इन इट बट यू स्टिल यू नो इट्स जस्ट गुड फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस. आई एटलीस्ट फील दैट वे. अब इसमें मेरे सेल्फ को तो कुछ नहीं होता बट फिर भी मे बी यू माइट बी इंटरेस्टेड इन इट. बट बेसिकली अ लिस्ट ऑफ ऑल द कंट्रीज दैट हैव बीन रैंक्ड फॉर हैविंग द मोस्ट हैंडसम मेन इन द वर्ल्ड. सो इफ यू आर अ सिंगल गर्ल एंड इफ यू बीन थिंकिंग कि यार अच्छे लड़के कहीं मिल ही नहीं रहे, अच्छी शक्ल वाले लड़के तो दूर दूर तक नहीं मिल रहे, मे बी यू शुड स्टार्ट लुकिंग इन द राइट कंट्रीज, क्योंकि शायद जिस कंट्री में आप ढूंढ रहे हो वहाँ पे हैंडसम मैन बचे नहीं है. बट आई एम गोना टेक यू थ्रू दिस लिस्ट इन जस्ट अ बिट, बट लेट्स किक स्टार्ट द आर. जैसे मैंने सिंगल लड़कियों की बात की, देखो पता होता है मेरे म्यूजिक मैनेजर को पता होता है, बॉयफ्रेंड इज द फर्स्ट सॉन्ग आई शुड बी प्लेइंग. करण औजला विद ए की ऑन द बिग मिक्स. गुड मॉर्निंग.

0: beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
0: Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
2: थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक है हर जगह, थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक आपको मिलेगा अगर आप है E311 पर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद रोड लेकर जा रहे हैं शारजा की तरफ, आपको मिल सकता है लाइट ट्रैफिक. दिस इज अराउंड द D93 एग्जिट. उसके अलावा S12 शारजा रिंग रोड पे भी लाइट से मोटर ट्रैफिक है, 5 से 10 मिनट का वहां पर डिले. थोड़ा सा हैवी ट्रैफिक मिल जाएगा E11 अल इत्तेहाद स्ट्रीट हेडिंग टुवर्ड्स नाहदा 1, वहां पे काफी ज्यादा हैवी ट्रैफिक हेडिंग टुवर्ड्स होरल अंस ईस्ट बिकॉज ऑफ अ कार एक्सीडेंट. वहां पे एटलीस्ट 12 मिनट का आपको डिले मिलेगा. एयरपोर्ट स्ट्रीट D89 वहां पे भी बंपर टू बंपर ट्रैफिक 5 मिनट के लिए. DIFC के पास E11 शेख जायद रोड हल्का ट्रैफिक मिलेगा, 6 से 7 मिनट का डिले. एंड E44 अलखेल रोड पर भी आपको मिल सकता है बंपर टू बंपर ट्रैफिक, दैट्स द यूजुअल 5 to 7 मिनट्स डिले अराउंड D3. एनी अदर अपडेट्स यू कैन लेट अस नो ऑन 4305.
0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. Big.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

आजकल के टाइम पे तो कोई ये बोलेगा ही नहीं, ये झूठ है। हुन मैंने कुछ नहीं चाहिदा तेरे सिवा मुझे सब कुछ चाहिए। आजकल के टाइम पे तो लड़कियां यही बोलती होंगी, उल्टी बातें करती होंगी। नॉनदलेस 10:46 ऑन द बिग क्लॉक, इफ गुड म्यूजिक एंड गुड कॉन्वर्सेशंस एंड गुड कंपनी इज व्हाट यू वांट, दैट इज व्हाट यू गोइंग टू गेट विद मी ऑन द बिग मिक्स। आई कीप यू कंपनी अंटिल 2 राइट हियर ऑन बिग 106.2। दिस इज द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: जब से झनकार से है दिल के तार में तब से।
1: चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: दी ओरिजिनल वाज सो नाइस यार, इतनी इतनी अच्छी लगी थी मुझे ये दी ओरिजिनल धुरंधर. आई वॉच्ड इट एंड आई एब्सोल्युटली एंजॉयड इट फॉर ऑल द राइट रीजंस, बट देन आई वॉच्ड द सेकंड पार्ट, जस्ट 10 मिनट्स ऑफ इट, एंड आई डोंट नो, बट आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड.
1: द बिग मिक्स विद ज़ोहरा ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: पता नहीं यार, मन ही नहीं किया आगे बढ़ने का. 10-15 मिनट मैंने देखी है एंड आई फेल लाइक यार सेम स्टफ हो रहा है, सेम ही चीज दिखाई जा रही है, मैं क्यों देखूं. एंड आई फेल लाइक आई डोंट नो, इट वाज जस्ट टू मच ऑफ एवरीथिंग, यू नो, व्हेन अ मूवी, इसीलिए कहते हैं पेसिंग इतनी ज्यादा जरूरी होती है. इट शुड स्टार्ट मे बी एकदम हाई, देन टेक इट डाउन अ नॉच, देन अगेन टेक इट 3 नॉचेस अप, यू नो, वैसे पेस मेंटेन करो सो दैट एक्साइटमेंट भी बंदे की बनी रहे. बट आई फेल लाइक द मूवी स्टार्टेड ओनली ऑन सच अ यू नो बैंग, लाइक वायलेंस वायलेंस वायलेंस, कि आई जस्ट लॉस्ट इंटरेस्ट विद इन 15 मिनट्स. आई लॉस्ट इंटरेस्ट, आई पुट इट ऑफ एंड आई डोंट इवन फील लाइक गोइंग बैक होम एंड कंटिन्यूइंग इट, स्पेशली नोइंग दैट इट्स अ 4-hour मूवी. I absolutely have no interest. On the other hand, कुछ ऐसी movies जिनका trailer देख के ही you know कि this movie is going to be worth watching. जैसे मैंने trailer देखा बंदर का, which is releasing I think on Friday, just day after tomorrow. Bobby Deol है इस picture में. It's based on a fake accusation. केस में फंस जाते हैं and he's trying to prove his innocence. It's based on multiple true events, है ना, मतलब अपने होम कंट्रीज में तो होता ही रहता है, फेक accusations हर रोज़ किसी ना किसी पे लग रहे होते हैं. सो हाउ ही गोज थ्रू दैट एंड यू नो वॉट ही डज टू गेट आउट ऑफ इट एंड प्रूव हिज इनोसेंस इज बेसिकली व्हाट द मूवी इज. बट लग रहा है बहुत बढ़िया मूवी होने वाली है बिकॉज इट्स बिन डायरेक्टेड बाय अनुराग कश्यप, हुज fan I have been since day one. I love his filmmaking style and I love his direction style. So the fact that he's making it along with someone like Bobby Deol, you know that achhi hone wali hai picture. Trailer dekh ke hi pata chal jata hai. I want to talk about this ki bahut sare actors aise hote hain jinki picture jab aap dekho na, you feel like yaar nahi wo power nahi raha inme. For example, hai na, just a small example, Salman Khan. For some reason I feel like he's, you know, lost his prime and I don't know, he's been trying but nahi ho raha, wo impact nahi aa raha jo wo pehle laya karte the in his prime. So I feel like that's happened with him. But Bobby Deol on the other hand, when he started he was theek hai, good, okay, but aisa nahi ki koi bahut bada craze ban gaya tha Bobby Deol ka. But now, especially after the few roles that he took up, you know, Animal ka role consider kar lo ya Bads of Bollywood kar lo, he's had so much of an impact that I feel like ab jaake after aging he's reached that point where you know that this is probably his prime. I feel like that has happened for Bobby Deol. Can you think of any other such actor jo ab jaake after you know getting into this age group ab jaake you know apne prime mein hai, that everything he does suddenly has so much power and so much impact? Can you think of any other name? If you can, let me know 4305 or you can even call me 800-1062 pe.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ए मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कुछ समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
4: Listen to her every day.
5: Mugembo! Khush hua!
6: अंकित जिनसे मैंने नंबर मांगा इनका, तो ये शांत हो गए थे। देयर वाज ऑकवर्ड साइलेंस बिटवीन अस फॉर ऑलमोस्ट अ मिनट। व्हाई?
7: क्योंकि काफी टाइम से किसी ने मेरे से नंबर नहीं मांगा।
6: कैसा लगा फिर अंकित, इतने टाइम बाद एक खूबसूरत लड़की ने आपसे नंबर मांगा?
7: तभी मैं 10-12 सेकंड के लिए
6: कॉलेज में तो मांगा होगा लड़कियों ने नंबर, आपका नहीं मांगा था?
7: नहीं, मैंने भी कभी नहीं मांगा।
6: अरे अरे, ऐसा क्यों एकदम, ये क्यों आप एकदम बिना तड़के की जिंदगी जी रहे हैं?
7: पता नहीं, अब उस टाइम पर और चीजें थी करने को, इंटरेस्ट और चीजों में था, तो इसलिए।
6: कॉलेज में तो हर किसी का इंटरेस्ट इसी चीज में होता है, और तो कहीं दिल लगता नहीं है। आपका किस चीज में था, करियर में?
7: थोड़ा बहुत पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट।
6: हाई पता, जब मैं स्कूल में थी ना, मुझे बहुत अच्छे लगते थे वो लड़के जो नर्ड्स होते थे, चश्मे वश्मे पहन के पढ़ा। मुझे आज भी बहुत क्यूट लगते हैं, थोड़े से भोलू होते हैं, और यू नो देयर इज द शाय, द कॉय टाइप्स, एकदम अंकित की तरह। हो गई शादी वादी आपकी?
7: हाँ, काफी टाइम हो गया।
6: हाँ, तो फिर इतनी लंबी क्यों बात कर रहे हो, सीधा टिकट लो और घर जा।
2: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक, द बिग थ्रिल विद नॉन्सी, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
8: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
9: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है जोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। नाउ लिसन टू योर फेवरेट सॉन्ग्स ऑन रिपीट विदाउट एनी इंटरप्शन। डाउनलोड द बिग फैन ऐप फॉर अनलिमिटेड सॉन्ग सिलेक्शन, अवेलेबल ऑन iOS एंड Android।

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है जोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: What's up, everyone? 106.2

0: 106.2 The Beat of Bollywood. The Big Chill.
1: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays 9 PM to 12 AM on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae. Missed your morning buzz?
2: उठा ले रे देवा.
0: Yes or no?
3: Akif, tell me something about your cycle or some story that you have with your first cycle.
4: Actually, my girlfriend was my bicycle only. We were in a joint family. And हम लोग मेरी एक controversy बहुत चलती थी कि ये अपनी bicycle को girlfriend की तरह रखता है. The way I was cleaning each and every time. उसको सजाना होता था. हर चीज लाके उसके ऊपर मतलब वो स्टिकर्स वगैरह वो लगाता था.
3: नेक्स्ट लेवल भाई, आपका तो रोमांस चल रहा है साइकिल के साथ यार. मतलब दिस इज प्रो मैक्स आकी भाई.
0: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 6 AM टू 10 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ए मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
4: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
5: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है Zohra on the Big Mix. On Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: 93.2 The Beat of Bollywood. The Big Mix. Brought to you by InsuranceMarket.ae.
1: InsuranceMarket.ae.
0: Missed your morning buzz?
2: Uthale re baba.
0: Yes, Suno.
3: Akib, tell me something about your cycle or some story that you have with your first cycle.
4: Actually, my girlfriend was my bicycle only. We were in a joint family. And meri ek controversy bahut chalti thi ki ye apni bicycle ko girlfriend ki tarah rakhta hai. The way I was cleaning each and every time. Usko sajana hota tha, har cheez laake uske upar... मतलब वो स्टिकर्स वगैरह वो लगाता था.
3: नेक्स्ट लेवल भाई, आपका तो रोमांस चल रहा है साइकिल के साथ यार. मतलब दिस इज प्रो मैक्स आकी भाई.
0: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 6 AM to 10 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
5: ट्रैफिक का हाल फिलहाल, एक कार एक्सीडेंट रिपोर्ट हुआ है D62 नादल हमार स्ट्रीट के पास. दिस इज अराउंड रसल खोर एंड रसल एरिया 3. अराउंड 10 मिनट डिले ऑन दैट रोड. E311 शेख मोहम्मद बिन जायद रोड वर्का 1 के पास लाइट ट्रैफिक है, 5 से 6 मिनट का डिले. अनदर कार एक्सीडेंट हैज बिन रिपोर्टेड ऑन E44 रसल खोर रोड. दिस इज अराउंड द D3 वाला एग्जिट, वहाँ पे कार एक्सीडेंट की वजह से आपको मिल जाएगा 12 मिनट का डिले. उसके अलावा थोड़ा सा लाइट ट्रैफिक E11 शेख जायद रोड बादा स्ट्रीट के पास आपको मिलेगा 6 से 7 मिनट का वहाँ पर डिले. एंड D69 मैदान स्ट्रीट पे आपको मिल सकता है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जस्ट फॉर अबाउट 4 to 5 मिनट्स. एनी अदर ट्रैफिक अपडेट यू कैन लेट अस नो 4305 पे.
0: सेल्फ ड्राइव डॉट ए नाउ ब्रिंग्स यू द मोस्ट अफोर्डेबल मंथली कार रेंटल्स इन द UAE स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 899 दिरहम्स अ मंथ. बिग 106.2.

0: 2 splendid years of Insurance Market Metro Station. From Sheikh Zayed Road to your screen, I am always nearby. Insurance Market.ae.
1: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
2: बहुत. मैं अपनी फेवरेट हूँ.
3: ये है जोहरा on the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood.

कॉकटेल 2 से आपने गाना सुना ऑन द बिग मिक्स इन द लास्ट आवर व्हिच इज वेयर वी हेडेड राइट नाउ. हम इस मूवी के बारे में बात करेंगे क्योंकि ट्रेलर रिलीज हो चुका है एंड इवन दो बहुत सारे मिक्स्ड रिएक्शंस आए हैं, एक ऐसा कॉमन रिएक्शन आई थिंक 90% लोगों से मिला है व्हिच आई एम वेरी वेरी ग्लैड अबाउट, क्योंकि यूजुअल मूवी में ऐसे नहीं होता कि ये रिएक्शन आता है. आई नो आई एम बीइंग वेरी जेनेरिक एंड वेरी वेग राइट नाउ बट थोड़ा थोड़ा पेशेंस. आई विल टॉक अबाउट दिस इन द नेक्स्ट आवर विद मी ज़ोरा. अंटिल 2 दिस इज बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: सचिन टंडन की आवाज हमरा गाने का नाम राइट हियर ऑन बिग 106.2. दिस इज द बीट ऑफ बॉलीवुड
1: द बिग मिक्स विद ज़ोहरा ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: देखो देयर आर वेरी फ्यू मूवीज जिसके लिए एट द मोमेंट लोग एक्साइटेड है बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट पीपल्स इंटरेस्ट इज नाउ शिफ्टिंग है ना. बॉलीवुड में पहले जितना इंटरेस्ट होता था अब लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट OTT में आ रहा है. यू नो ऐसे शोज देखने में आ रहा है समथिंग दैट यू नो इज मोर रियल. जैसे यू वुड हैव हर्ड अबाउट द क्रेज ऑफ दिस इंग्लिश शो कॉल्ड ऑफ कैंपस. एवरी वन इज गोइंग गागा ओवर इट. ऑनेस्टली मैंने भी देखा एंड आई फील लाइक वी शुड लर्न फ्रॉम दैट काइंड ऑफ स्टफ बिकॉज सो रियल सो रॉ. इट शोज इमोशंस इन अ नॉन टॉक्सिक वे. यू नो इन अ संदीप रेड्डी वांगा वर्ल्ड जब ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं विच आर नॉट negative, not toxic in any way, it is like a breath of fresh air. Anyway, the point right now is that Bollywood has to try really, really hard to make a comeback, hai na? Ki it is still alive and it is still thriving. Toh aise do main trailers ki baat karna chahti hoon. I've already spoken about Bandar, Bobby Deol ki jo movie aa rahi hai. It's releasing this Friday, if I'm not wrong, and that looks very, very promising from the trailer. What also looks promising is Cocktail 2. Now, इसके मिक्सड रिव्यूज आ रहे हैं बिकॉज यू नो कॉकटेल 1 वॉज सच अ बिग हिट मैसिव हिट. तो ऑब्वियसली कॉकटेल 2 की कास्ट यू नो मेकर्स दे हैव बिग शूज टू फिल इन विच दे हैव ट्राइड रियली हार्ड. यू नो यू कैन सी की कास्टिंग ही इतनी परफेक्ट हुई है. इट लुक्स लाइक अ गुड मैच कि दे विल बी एबल टू डू अ गुड जॉब. ट्रेलर अगर आप देखो तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है. दे हैव ट्राइड टू डू समथिंग डिफरेंट. डोंट नो कि क्या होगा क्या नहीं होगा. दे हैव लेफ्ट इट वेरी ओपन एंडेड. ट्रेलर देखिए, यू कैन नॉट गेस कि इस मूवी में एग्जैक्टली क्या हो रहा है. सो दैट इज इंटरेस्टिंग. बट व्हाट आई लव द मोस्ट, यूजुअली मूवी में जो लीड एक्टर होता है मेल एक्टर, दैट पर्सन इज यू नो लीडिंग द मूवी. कि ये जो मूवी है ये मेरे कंधों पर चल रही है, मेरे बलबूते चल रही है, आई एम द लीड, बाकी सब फॉलो कर रहे हैं. इस ट्रेलर को देख के ऐसे लग रहा है दैट कृति सैनन एंड रश्मिका मंदाना आर एक्चुअली द वंस लीडिंग द मूवी एंड शाहिद कपूर हियर इज लाइक द ट्रॉफी बॉयफ्रेंड. Which is so refreshing to see, honestly, because I was tired of seeing the women as the trophy girlfriends or the trophy wives. Inko bas naam ke liye, show ke liye dal diya jata hai, just to beautify the movie. In this trailer, it looks like these two are the lead actresses in the movie, and he's just the filler, or he's someone jisko, you know, bas beautiful dikhne ke liye ya cool dikhne ke liye dal diya hai beech mein. So that is my opinion, at least what I felt when I watched the trailer. If you've not checked it out yet, check it out. Let me know what you love the most about it, and let me know agar ye dono, you know, aapke पास ऑप्शन हो देखने का, विच मूवी वुड यू पिक? वुड यू वांट टू बी यू नो समवन हु वांट्स टू वॉच वायलेंस एंड यू नो स्टफ लाइक बंदर, यू नो बॉबी देओल, और आर यू मोर ऑफ द रोम कॉम काइंड्स? की कॉकटेल 2 ही मेरे लिए सही है. लेट मी नो. 800-1062 इज द टोल फ्री नंबर.
2: साला पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे. लोग भूल जाते हैं सर कि कहां लेकर आए थे, कहां लेकर जाओगे. मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे.
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
3: Two splendid years of Insurance Market Metro Station. From Sheikh Zayed Road to your screen, I am always nearby. InsuranceMarket.ae.
4: Listen to her every day.
5: Mugembo! Khush hua!
6: अंकित जिनसे मैंने नंबर मांगा इनका, तो ये शांत हो गए थे. देयर वाज ऑकवर्ड साइलेंस बिटवीन अस फॉर ऑलमोस्ट अ मिनट. व्हाई?
7: क्योंकि काफी टाइम से किसी ने मेरे से नंबर नहीं मांगा.
6: कैसा लगा फिर अंकित, इतने टाइम बाद एक खूबसूरत लड़की ने आपसे नंबर मांगा?
7: कभी मैं 10-12 सेकंड के लिए
6: कॉलेज में तो मांगा होगा लड़कियों ने नंबर, आपका नहीं मांगा था?
7: नहीं, मैंने भी कभी नहीं मांगा.
6: अरे अरे, ऐसा क्यों एकदम? ये क्यों आप एकदम बिना तड़के की जिंदगी जी रहे?
7: पता नहीं, अब उस टाइम पर और चीजें थी करने को, इंटरेस्ट और चीजों में था, तो इसलिए.
6: कॉलेज में तो हर किसी का इंटरेस्ट इसी चीज में होता है, और तो कहीं दिल लगता नहीं है. आपका किस चीज में था? करियर में?
7: हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट.
6: हाई पता, जब मैं स्कूल में थी ना, मुझे बहुत अच्छे लगते थे वो लड़के जो नर्ड्स होते थे, चश्मे वश्मे पहन के पढ़ा. मुझे आज भी बहुत क्यूट लगते हैं, थोड़े से भोलू होते हैं, और यू नो देयर इज द शाय, द कॉय टाइप्स, एकदम अंकित की तरह. हो गई शादी वादी आपकी?
7: हाँ, काफी टाइम हो गया.
6: हाँ, तो फिर इतनी लंबी क्यों बात कर रहे हो? सीधा टिकट लो और घर जाओ.
1: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक, द बिग थ्रिल विद मानसी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड.
8: जल्दी हटा तेरा खटारा, चल हटा.
9: हाँ,
8: अरे जल्दी हटा.
9: हाँ.
1: Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
0: Traffic ka hal filhal, E311 Sheikh Mohammed bin Zayed Road heading towards Sharjah. Thoda sa traffic D93 Tunis Street ke junction ke paas aapko milega. At least about a 5 to 6 minute ka delay on that road. Uske alawa E44 heading towards Dubai Design District. Ek car accident ki wajah se wahan pe 10 se 11 minute ka delay. E11 Sheikh Zayed Road pe thoda sa light traffic around Bada Street aapko mil sakta hai. And D83 Rabat Street Festival City ke paas bhi light se moderate traffic 5 to 6 minute ka wahan par bhi delay. Any other update you can let us know 4305 pe.
1: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
2: Tum apne aap ko bahut pasand karti ho.
8: Bahut. Main apni favorite hu.
1: Ye hai Zohra on the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: जसलीन रॉयल की आवाज, खो गए हम कहां, राइट हियर ऑन बिग 106.2. दिस इज द वीर ऑफ बॉलीवुड. बिफोर वी रैप अप विद द शो टुडे, अ क्विक सरप्राइज फॉर यू. ओपन मूवी टिकट्स जीतना चाहते हो क्या?
1: द बिग मिक्स विद ज़ोहरा ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: जीतना चाहते हो तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे आज पूछने वाली हूँ. सिंस आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट कॉकटेल 2 का ट्रेलर ड्रॉपिंग एंड इट यू नो गेटिंग ऑल द मिक्स्ड रिएक्शंस, एंड आई फील लाइक अच्छी होगी बिकॉज फॉर वंस इट लुक्स लाइक द लेडीज आर लीडिंग द मूवी. सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर इट. बट गोइंग बैक टू कॉकटेल द ओरिजिनल मूवी, बहुत ही सारे गाने इसके इतने मतलब मैसिव हिट्स रहे हैं. लिटरली एवरी सिंगल सॉन्ग हैज बिन सच ए ह्यूज सक्सेस. देयर इज वन सॉन्ग जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है. आई नीड यू टू टेल मी कि इस गाने का सिंगर कौन है. ठीक है, तो मैं गाना आपके लिए चलाने वाली हूँ. जस्ट टेल मी वॉट इज द नेम ऑफ द सिंगर. You can give me the female singer or the male singer. Tumhi Ho Bandhu mein kaun tha singer? Tumhi Ho Bandhu mein female and male singer dono hai. If you can give me just one name of any of the singers, then you walk away with open movie tickets, a couple open movie tickets. All you've got to do is tell me Tumhi Ho Bandhu mein singers mein se kisi bhi ek singer ka naam kya tha. If you know the right answer, get calling. 800-1062 is our toll free number. That is 800-1062.
1: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: SelfDrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Yes, that's right. You're with me, Zohra, on The Big Mix. Filhal, hum khel rahe hain contest if you want to walk away with open movie tickets. Mere saath phone line pe hai Tanzeel. Hi, Tanzeel.
2: हेलो कोहरा,
1: हाउ आर यू? इतना सीरियस वाला हेलो बोला है जैसे प्रैक्टिस किया हो 3-4 बार ऑन एयर आने से पहले. हेलो बोलूंगा, हेलो हेलो. क्या करते हो तंजील?
2: मैं सेल्फ एग्जीक्यूटिव.
1: अच्छा, सेल्फ, ओके, वेरी वेरी गुड. तंजील, कहाँ जा रहे हो फिलहाल? आज क्या प्लान है आपका?
2: एक्चुअली मैं अभी ऑफिस से निकला था एक मीटिंग के लिए, तो जबल अली जा रहा था और रास्ते में ट्रैफिक मिला ग्लोबल विलेज से पहले जस्ट.
1: ओहो, वाओ, व्हाट एन इन्फॉर्मेटिव कॉलर. मतलब हमको आपने जवाब भी दिया है कॉन्टेस्ट का, आप एक स्टोरी भी शेयर कर रहे हो, आपने ट्रैफिक अपडेट भी दे दिया, वेदर के बारे में भी थोड़ा बोल दो. जॉब मार्केट कैसे है बाहर, मिल रही है जॉबें लोगों को? ऑल इन वन है तंजील. अच्छा तंजील, आपने कहा वैसे कॉकटेल का एक किस्सा आपके पास है, इंटरेस्टिंग, टेल अस अबाउट इट.
2: जी जी, एक्चुअली जब कॉकटेल फर्स्ट कॉकटेल आई थी ना, तो उस टाइम में एक रिलेशनशिप में आया था.
1: ओके
2: ओके.
1: और ऐसी कॉकटेल रिलेशनशिप था फिर आपका?
2: हाँ, थोड़ा बहुत था.
1: क्या था? थोड़ा बहुत स्मॉल साइज का कॉकटेल जूस था.
2: इसीलिए आई थिंक मुझे लगा ब्रेकअप हुआ मेरा 2014 में.
1: पिक्चर की वजह से ब्रेकअप हो गया? ये तो सुनना पड़ेगा, क्यों?
2: एक्चुअली जिससे मेरे जो मेरे रिलेशन में आए थे ना, हम लोग एक्चुअली फेसबुक पे ही हम लोगों ने बात की और मैं शुरू की, और हम लोगों ने एक दूसरे को देखा नहीं. फर्स्ट टाइम मैं दुबई आया था उस टाइम.
1: अच्छा.
2: हाँ, तो हमने यही प्रॉमिस किया था, हम एक दूसरे को कभी नहीं देखेंगे.
1: ओ, तो ये ब्लाइंड डेटिंग हो गई. ब्लाइंड डेट नहीं, ब्लाइंड डेटिंग.
2: जी जी, ब्लाइंड डेटिंग थी. तो जब मैं 2 साल बाद रिटर्न गया इंडिया, तो उन्होंने ऐसा किया कि अपने आप को फेस नहीं किया, अपनी फ्रेंड को मेरे सामने फेस कर दिया. तो मैं तो वही समझा, लेकिन वॉइस कहीं ना कहीं मुझे मैच नहीं कर पा रही थी.
1: तो आपको दोस्त से प्यार हो गया?
2: अब जब क्या करूं, मतलब.
1: ओ रब्बा, आप तो रियल लाइफ सैफ अली खान निकले.
2: मैंने यही बोला, मैंने कहा तुमने आगे किया क्यों था, पहले ये बताओ.
1: ओहो,
2: मैं सिर्फ आजमाना चाह रही थी, मतलब वही.
1: अरे रे, ये तो बहुत अनफेयर. आई एम सॉरी, बट आई थिंक ऑल द गर्ल्स विल साइड विद यू ऑन दिस. यू आर राइट, शी वाज वेरी रॉन्ग. And I'm being a woman telling you that, कि नहीं आप सही हो.
2: बिल्कुल, इसलिए मुझे तो वही लगा ना, मैं उसी तरीके से इमेजिन कर रहा हूँ सब चीज, क्योंकि मैंने देखा नहीं 2 साल एक बंदे को. अब 2 साल बाद अगर फेस टू फेस मिल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे फिर वही फील आएगा.
1: अरे, सो सैड.
2: उसके बाद ही वो रिलेशन ही हमारा 2014.
1: तो फिर आप बेस्ट फ्रेंड आपकी गर्लफ्रेंड बनी कि नहीं बनी? जिससे प्यार हो,
2: वो भी चली गई और वो भी चली गई.
1: खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा भरा ना. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग यार. चलो, मजा आ गया कि कॉकटेल से आपके पुराने नाते हैं, तो आई थिंक कॉकटेल 2 से भी कुछ ना कुछ निकल आए शायद. क्या पता, क्या आप रिलेशनशिप में हो अभी या सिंगल हो, शादी हो गई, क्या सीन?
2: मैं नहीं, अभी सिंगल ही हूँ.
1: अरे चलो, फिर न्यू इंस्पिरेशन, न्यू मूवी, न्यू स्टोरी.
2: आई थिंक सो, इसलिए मुझे कॉकटेल के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ.
1: कॉकटेल 2
2: जरूर देखूंगा.
1: आपकी जिंदगी में भी होगा कॉकटेल 2. अच्छा तंजील, फटाफट से मुझे बताओ, ये गाना मैंने सुनाया था तुम ही हो बंधु, इसमें 2 सिंगर है, किसी भी एक सिंगर का नाम मुझे बता दो फटाफट.
2: कविता सेन एंड नीरज सिधार.
1: वेरी गुड, नीरज सिधार. यस, परफेक्ट, बिल्कुल सही जवाब. कंग्रेचुलेशंस, ओपन मूवी टिकट्स हुए आपके. अनफॉर्चुनेटली मैं सिर्फ आपको 2 टिकट्स दे सकती हूँ, आप 3 नहीं जा सकते, तो कॉकटेल सीन नहीं हो सकता यहाँ पे. एक को चुनना, एक के साथ जाना, ठीक है? मल्टीपल चॉइस. चलो, परफेक्ट, सो फन टॉकिंग टू यू तंजील, हैव अ ग्रेट ग्रेट डे.
2: बाय बाय.
1: मजा आ गया, फैसिनेटिंग टू हियर रियल लाइफ लव स्टोरीज, वो भी कॉम्प्लिकेटेड वाली, बिल्कुल जैसे पिक्चर में से निकल के रियल लाइफ में हो गया हो. तंजील ने अपनी स्टोरी शेयर की. But we will be playing the Big Bollywood Quiz with you tomorrow as well. So make sure you're listening to Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: ज्यादा तो मैं भी शरीफ हुआ था और शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।
1: Big 106.2, The Beat of Bollywood. Early in the morning, The Big Breakfast with Sid. Weekdays from 6 to 10 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color.
2: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
3: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
1: ये है जोहरा on the Big Mix on Big 106.2, The Beat of Bollywood.

जब तक नहीं अब तक, क्योंकि सिर्फ अब तक का सफर था मेरा आपके साथ। इट्स ऑलमोस्ट टू, विच इज माई टाइम टू टेक योर लीव। मेरी आवाज, मेरा अंदाज अगर आपको पसंद आया हो, माई हैंडल ऑन इंस्टाग्राम इज जोहरा अमीन, यू कैन गो चेक मी आउट देयर। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस, ठीक है, 106.2 बिग एफएम, यहां पे जाके फॉलो करना ही है। वी कीप पुटिंग अप ऑल फन इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट फॉर यू ओवर देयर, सो मेक श्योर टू फॉलो अस। आई नाउ सी यू टुमारो मॉर्निंग 10 से 2 के बीच ऑन द बिग मिक्स। अंटिल देन, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड टू बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: splendid years of Insurance Market Metro Station. From Sheikh Zayed Road to your screen, I am always nearby. Insurance Market.
1: Rani Shahrukh, Song of the Hour, brought to you by Insurance Market. Ujjwal Khanna ke saath Big 106.2 pe. Aap sun rahe hain The Big Life.
2: The Big Life with Ujjwal on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: जैसी ताजगी इनके गानों में होती है, ऐसी ताजगी हमारे बगल वाले ऑफिस की पैंट्री के बाहर होती है. स्पेशली यू नो समर कूलर्स के अगर कोई खुशबू आ जाए ना, एक विफ से भी आ जाए, मेरे को लगता है कि जाकर तो देखना ही पड़ेगा एक बारी. यू नो आई एम दैट सॉर्ट ऑफ अ गाय हु विल ऑलवेज लुक एट द अदर टेबल व्हाट हैव दे ऑर्डर्ड. आई स्वेयर आई डू दैट अ लॉट. एनीवे, सो खुशबू आ रही थी खीरे की. नाउ यू नो क्यूकम्बर इज लाइक द एपेक्स समर फूड फॉर ऑल ऑफ अस. कितने तरीके के सैलड्स बन सकते हैं. आप कुछ ना कुछ ना भी करो तो भी आप मतलब खीरा काट के नींबू डाल के नमक डाल के आप खा सकते हो, क्योंकि उसकी तासीर इतनी ठंडी होती है. इट्स ऑलवेज सॉर्ट ऑफ नाइस टू हैव क्यूकम्बर, एंटी ऑक्सीडेंट वाटर जूस, आई डोंट नो, सो मेनी थिंग्स आर ऑफ क्यूकम्बर कुड बी मेड. बट इंटरेस्टिंगली यू नो दीज गाइज वर डूइंग दीज गॉर्जियस क्यूकम्बर टोमेटो सैलड्स एंड दोज बेबी टोमेटोज के साथ दे हैड पुट सम पाइन दैट एंड सम वॉलनट्स एंड एप्रिकॉट. And I was like, who is the chef here, bhai? Kaun bana raha hai? So apparently what they do is they get all the things done and then they obviously plate it. They've got beautiful plates. The cutlery is great. And then of course they heat it, they warm it up. And then they put it baqaida on a trolley and they roll it out in the entire office. Imagine, that is the kind of hospitality that's happening. This is literally like a mini hotel or a restaurant that's working hamare baju mein hamare office ke. But you know, good show for all the human resource people who take that effort and you know you give that flexibility enough to sort of work with the medium of food, because food is sabse important hota hai, especially this time pe. And you know, since I was discussing and talking about khira, मैंने सोचा कि देसी चीज़ें क्या बन सकती हैं खीरे की, है ना. खीरे की सब्जी तो नहीं बन सकती, बट मच टू माई सरप्राइज लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली हैव मेड खीरे की सब्जियाँ. नाउ दे कुड बी वेरियंट्स ऑफ खीरे की सब्जी, जिसमें काकड़ी कोशंबिर है, ये कुछ साउथ इंडियन डेलिकेसी है. देन देर इज इटालियन स्टाइल पोटेटो एंड क्यूकम्बर सैलड जो बनता है. देन देर इज वन विच इज कॉल्ड द क्यूकम्बर पचड़ी, विच इज अ साउथ इंडियन स्टाइल ऑफ कूलिंग द साइड डिश, दैट्स वन. देन देर इज अ मैंगलोरियन क्यूकम्बर करी जो बकायदा बनती है. आई एम श्योर दे वुड ऐड अ लॉट ऑफ थिंग्स अपार्ट फ्रॉम जस्ट द खीरा, बट खीरे की सब्जियां भी बन जाती हैं. दैट्स वॉट माई सरप्राइज वॉज. एंड आई गेस वी एज देसीज आई थिंक हम किसी भी चीज़ की सब्जी बना सकते हैं, किसी भी इसकी करी बना सकते हैं, एज लॉन्ग एज कि हमें लगे कि हाँ इसको हम कहीं ना कहीं तो जस्टिफाई कर ही सकते हैं. फिलहाल मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ सिल्क रूट का गाना, द ट्रैक इज डुबा डुबा आपके साथ अंटिल फाइव. आप सुन रहे हैं द

0: समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से।
1: ये है उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2, the beat of Bollywood.
1: Imagine your home powered by Next Level Fiber. With Fiber Plus from E&, enjoy advanced Wi-Fi 7 performance for faster streaming, smoother gaming, and expanded coverage in every room. More speed, more coverage, more performance. Experience the difference with Fiber Plus. Visit E&, to know more. T's and C's apply. E&, go for more.
2: ईश्वर की प्रार्थना करने का क्या फायदा जब उसकी दी हुई जिंदगी की कदर करना ना जानो।
3: सुनो, जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो।
0: नाम उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: तरफ प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: थिंक कार रेंटल्स आर एक्सपेंसिव, थिंक अगेन, because right now the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now, because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. selfdrive.ae, your car, your price, your way.
1: Big 106.2. That's My Song by E-End.

0: चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, GoChat के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। GoChat ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: Big 106.2, The Beat of Bollywood.

वर्ल्ड बाइसिकल डे आज बिग 106.2 पे कुछ ऐसी फिल्मों के गाने आप सुन रहे हैं, चाहे वो गाना हो, चाहे वो फिल्म का सीक्वेंस हो, या कुछ भी ऐसा जोन जहां पे साइकिल का इस्तेमाल हुआ है। एंड ऑफ कोर्स खिलाड़ी का अगला गाना आप सुन रहे हैं, अक्षय कुमार इन द टाइम्स ऑफ कार्स एंड बाइक्स इज गोइंग ऑन अ साइकिल टू हिज कॉलेज एंड ऑल्सो सॉर्ट ऑफ डज मैनेज टू इम्प्रेस हिज लव इंटरेस्ट। द ट्रैक इज बदर हसन अमल का, आपके साथ अंटिल 5।

0: 101.2 The Beat of Bollywood. The Big Jill.
1: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
2: हम एक ही बार जीते हैं, एक बार मरते हैं। शादी भी एक ही बार होती है और प्यार भी एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता।
0: This is Ujjwal on the Big Life on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the Hour brought to you by insurancemarket.ae.

0: splendid years of Insurance Market Metro Station. From Sheikh Zayed Road to your screen, I am always nearby. Insurance Market.
1: सॉन्ग ऑफ द आवर आपने सुना, कुछ ऐसे गाने आप सुन रहे हैं जो साइकिल पे शूट हुए हैं। आज वर्ल्ड बाइसिकल डे है और हम उन सभी गानों को सम्मानित कर रहे हैं, स्पेशली इन गानों को जिसमें रोमांस भी है और साथ में साइकिल की सवारी भी है। पता नहीं एक्टर्स को साइकिल चलानी आती थी यार, वो सीखते थे, लेकिन साइकिल चलाने में कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। साइकिल चलाते चलाते हम एक्टिवा पे पहुंच गए, फिर स्कूटी पे पहुंच गए, फिर हम गोवा पहुंच गए। तो आई थिंक साइकिल का एक बहुत ही इंडिस्पेंसेबल रोल है हमारी जिंदगी में, इज़न्ट इट?
2: द बिग लाइफ विद उज्ज्वल ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: हमें तो बहुत जंतोजहद के बाद एक साइकिल मिलती थी, लेकिन अभी तो यू नो द काइंड ऑफ साइकिल्स दैट वी हैव एंड ओ माय गॉड दे आर ब्यूटीफुल साइकिल्स। आज की डेट में आपको इतने वेरिएंट्स में और इतने प्राइजेस में मिल जाएगी कि आपको लगेगा कि वाओ, वेयर वर दी साइकिल्स ऑल ओवर। या शायद हम एक्सपोज्ड नहीं थे उन किस्म की एक्सोटिक साइकिल्स को। बट एनीवे, इफ आई टॉक अबाउट दुबई, देयर आर लॉट ऑफ साइक्लिस्ट्स इन दुबई। इन फैक्ट RTA ने तो पूरा एक नेटवर्क ऑफ साइकिलिंग पाथ दिया हुआ है हम लोगों को, फॉर अस टू सॉर्ट ऑफ यू नो जस्ट राइड द साइकिल स्मूथली इन वन साइड ऑफ द प्लेस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्कूटर, आई एम टॉकिंग अबाउट साइकिल, जिसमें अलकुदरा आपका साइकिलिंग ट्रैक है, पता नहीं गए हो नहीं गए हो वहाँ पे, दैट साइड। इग्नादुल शिबा में भी है, देयर इज अ साइकिलिंग ट्रैक देयर एज वेल, एंड इट्स परफेक्ट फॉर योर यू नो इवनिंग राइड्स, एंड इट ऑफर्स गुड सेफ्टी मेजर्स, सेफ्टी फीचर्स भी हैं, एंड प्लस यू कैन सी दिस आइकॉनिक दुबई स्काईलाइन। आई हैपन टू गो देयर विद माई फ्रेंड, सो दैट्स वाई आई नो कि वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त सीन होता है। इनफैक्ट अगर आप साइकिलिस्ट हैं तो आप इस वीकेंड पे, चूंकि वर्ल्ड बाइसिकल डे सेलिब्रेट हो रहा है, शारजा में वर्ल्ड बाइसिकल डे इवेंट है 7 तारीख को, संडे को सुबह 6 बजे, तो ऐसे गर्मी का भी कुछ लफड़ा नहीं है। ओके, 7 जून संडे एट 6 AM एंड इट इज़ एट अल जादा शारजा। ओके, जो डिटेल्स हैं, इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द शारजा स्पोर्ट्स काउंसिल इन कोऑपरेशन विद एंड्योरेंस स्पोर्ट्स सर्विसेज। ये एक कम्युनिटी इवेंट है, इट इज़ टू सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेट द कोमेमोरेटिव राइड टुगेदर ऑल ऑफ यू। You have to register there first. You have to go to Premier Online before June 6, okay? And you can figure out. Apna biking gear, wo sab aapko leke jana hai. Okay, that's very important. Up next comes in the film which was the cycle anthem for all of us. Jo Jeeta Wahi Sikandar. And scene by scene. And especially the climax. It was everything about the prestige of the college, the ego. And of course, to show that, you know, with ordinary things, we can achieve extraordinary objectives in life. Take it away. Satna Sarkum ki awaaz aapke saath until 5 o'clock.

0: हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं, दिल आखिर तू क्यों रोता है।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
1: Big 106.2, the beat of

0: कॉलेज स्पेस, कॉलेज के प्रमोशन और साथ में साइकिल बाजी, काजोल और शाहरुख खान का रूठना बनाना, यही चला है बॉलीवुड फिल्मों में। किसी ने साइकिल को सीरियसली लिया ही नहीं है, अपार्ट फ्रॉम जो जीता है भाई सिकंदर।
1: द बिग लाइफ विद उज्जवल ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: बट हमने तो साइकिल को बहुत सीरियसली लिया है अपने बचपन में, अभी भी हम देख रहे हैं अपने बच्चों को बड़ा होता है वो, एंड यू नो दे आर सो इन लव विद द साइकिल। लाइक यू नो, जब आप अपने पेट को, मतलब जो पेट ट्रांसपोर्ट होता है उसको प्यार करते हो, जैसे हम सबको अपनी गाड़ियों से बड़ा लगाव है ना, हमें लगता है कि कोई और ना चलाए, कोई और ना टच कर ले। सिमिलरली गोज विद किड्स एज वेल, देयर साइकिल इज देयर एवरीथिंग एंड यू नो दे कीप इट लाइक सो अपटाइट क्लोजेस एज एनीथिंग दैट दे वुड वांट टू कीप। एंड बिल्डिंग्स में स्पेशली दुबई की, वहां पर तो सिंगल साइकिल पार्किंग होती है, तो एक ही पार्किंग स्टैंड में कितनी सारी साइकिलें मर्ज होती है, तो उसमें भी मेरा बेटा वाज लाइक पापा कैन आई पार्क माय साइकिल समवेयर एल्स, आई सेड नो यू डोंट हैव अ चॉइस, यू हैव टू पार्क इट देयर, बिकॉज़ और कहीं पार्किंग स्टैंड है ही नहीं, साइकिलिंग पार्किंग स्टैंड है ही नहीं, इतना है ही नहीं। सो आई गेस इट गोज आउट टू ऑल द डेवलपर्स हु आर बिल्डिंग मोर बिल्डिंग्स टू हैव मोर साइकिल स्पेसेस फॉर चिल्ड्रन टू पार्क द साइकिल, है ना। उनकी भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि बस हमें अनशन जगह पे ऐसे पार्क नहीं कर देनी कोई भी चीज, दे ऑल्सो डेवलप दर हैबिट। वेल मूविंग ऑन टू हैबिट्स, नेदरलैंड्स इज द साइकिल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, डू यू नो दैट 30% ऑफ ऑल द ट्रिप्स टेकन वाया बाइक एंड साइकिल इज डन in this country with a staggering 15 billion kilometers pedaled annually. In fact, if you've been to Netherlands, agar aap cycle ke raste mein aayenge to cycle wala rukega nahi bilkul bhi, aur aapko pata hai 2-4 aapko suna ke jayega ki aap mere raste mein ho, move out of that way. It has happened with me personally. China also boasts well over 500 million cycles across. So that is something that the Western world, and in fact a larger part of the world is following. I guess we should also adopt a little bit of cycling standards. What do you say? A fast track song of the hour. Mujhse Dosti Karoge Se Gana. The track is Rani and Kareena and Hrithik Roshan. They're fantasizing their love interests, and of course the common love is not Hrithik Roshan, it's cycle. On that cycle, take it away.
1: Beat 106.2, fast track song of the hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: ईश्वर की प्रार्थना करने का क्या फायदा जब उसकी दी हुई जिंदगी की कदर करना ना जानो।
2: सुनो, जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता
1: कल हो ना हो।
3: नाम उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

वर्ल्ड बाइसिकल डे आप सुन रहे हैं बिग 106.2 पे. कुछ ऐसे फिल्मों के गाने आप सुन रहे हैं, जो गाने आप सुन रहे हैं उसमें कुछ कुछ पोर्शंस में साइकिल यूज हुई है या फिर एक्टर या एक्ट्रेस उस साइकिल पे है, साइकिलिंग कर रहे हैं. सलमान खान इस पूरे गाने में, क्योंकि इसे गाना है, इसमें वो साइकिल चला रहे हैं. एंड जो नेक्स्ट गाना है उसमें शाहिद कपूर जो है वो करीना कपूर को आगे बिठा के रतलाम की गलियों का मजा दिला रहा है. एंड ऑफ कोर्स द सॉफ्ट बैंटर दैट हैपेंस इन दिस सॉन्ग. टेक इट अवे, द ट्रैक इज आओ मिलो चले. शान की आवाज़ आपके साथ अंटिल फाइव. ऑल्सो मेरी आवाज़ अगले घंटे आपको बोलेगी कि प्लीज़ पार्टिसिपेट कीजिए, बिकॉज कपल मूवी टिकट्स जीतने का आपके पास मौका है. आई लेट यू नो ऑल द डिटेल्स. स्टिक अराउंड.

0: शफकत मानत अली की आवाज बिग 106.2 पे उज्जवल खन्ना के साथ हैं। गुड इवनिंग टू यू। टाइम टू विन ओपन कपल टिकट्स
1: द बिग लाइफ विद उज्जवल ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था जो फिल्म आपको देखनी है आप देख सकते हैं आज। इनफैक्ट इज द चांस ऑफ विनिंग दीज ओपल कमन एडवाइस। एक्चुअली कल भी मैं दूंगा इसको, बट यू हैव टू डिसाइड कौन सी फिल्म आपको देखनी है। आई थिंक ऑब्सेशन इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ रियली इन ऑब्सेशन विद अ लॉट ऑफ पीपल। लॉट ऑफ पीपल आर हेलिंग द फिल्म। उसके अलावा अगर आप हिंदी फिल्म में रुचि रखते हैं देन ऑफकोर्स बंदर रिलीज हो रही है इस हफ्ते, और है जवानी तो इश्क होना है दैट इज ऑल्सो रिलीजिंग। बट राइट नाउ फॉर मी टू रिलीज दीज ओपन कपल इन्वाइट्स, आज चूंकि साइकिल दिवस है, वर्ल्ड बाइसिकल डे है, तो मैंने सोचा कि ये जो गाना है ये मैं आपको सुनाऊं एंड यू जस्ट हैव टू टेल मी द नेम ऑफ द फिल्म। अब ये गाना मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि इस गाने में रिक्शा भी दिखेगी आपको। इस गाने में आपको सलमान खान और करीना कपूर एक साथ दिखेंगे। सलमान खान साइकिल चला रहे हैं, करीना आगे डंडे पर बैठी हुई हैं, करीना ने लाल रंग की कुर्ती पहनी हुई है, सलमान ने आई थिंक मोव ही कहते हैं ना लाइट पर्पल को, मोव कलर का कुर्ता पहना हुआ है, एंड यू नो धनिया पत्ती के बीच में इनका रोमांस वो चालू है। 1 2 3 गो हैव अ लिसन टू दिस वन।
2: तू चाहिए शाम सुबह।
0: ओके डायल द नंबर राइट नाउ 800-1062 व्हिच इज 800-1062 डायल इन राइट नाउ व्हिच इज द फिल्म जिसका ये गाना है। वंस अगेन 1 2 3 गो।
2: तू चाहिए शाम सुबह। तू चाहिए
0: 800-1062। इनफैक्ट जब ये गाना रिलीज हुआ था इसका जो पोस्टर कवर था वो सलमान और करीना वाज सिटिंग ऑन अ साइकिल। 800-1062 डायल इन राइट नाउ एज़ आई गिव यू रास्टू कंगना रनौत तोशिन शारे विद सच अ लवली ट्रैक फ्रॉम द 2000s। द ट्रैक इज माही आपके साथ अंटिल 5 o'clock।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: Listen to her every day.
4: Mugembo! Khush hua!
5: अंकित जिनसे मैंने नंबर मांगा इनका, तो ये शांत हो गए थे। देयर वाज ऑकवर्ड साइलेंस बिटवीन अस फॉर ऑलमोस्ट अ मिनट। व्हाई?
6: क्योंकि काफी टाइम से किसी ने मेरे से नंबर नहीं मांगा।
5: कैसा लगा फिर अंकित, इतने टाइम बाद एक खूबसूरत लड़की ने आपसे नंबर मांगा?
6: तभी मैं 10-12 सेकंड के लिए
5: कॉलेज भी तो मांगा होगा लड़कियों ने नंबर, आपका नहीं मांगा था?
6: नहीं, मैंने भी कभी नहीं मांगा।
5: अरे अरे, ऐसा क्यों एकदम, ये क्यों आप एकदम बिना तड़के की जिंदगी जी रहे हैं?
6: पता नहीं, अब उस टाइम पर और चीजें थी करने को, इंटरेस्ट और चीजों में था, तो इसलिए।
5: कॉलेज में तो हर किसी का इंटरेस्ट इसी चीज में होता है, और तो कहीं दिल लगता नहीं है। आपका किस चीज में था, करियर में?
6: थोड़ा बहुत पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट।
5: हाई पता, जब मैं स्कूल में थी ना, मुझे बहुत अच्छे लगते थे वो लड़के जो नर्ड्स होते थे, चश्मे वश्मे पहन के पढ़ा। मुझे आज भी बहुत क्यूट लगते हैं, थोड़े से भोलू होते हैं, और यू नो देयर इज द शाय, द कॉय टाइप्स, एकदम अंकित की तरह। हो गई शादी वादी आपकी?
6: हाँ, काफी टाइम हो गया।
5: हाँ, तो फिर इतनी लंबी क्यों बात कर रहे हो, सीधा टिकट लो और घर जाओ।
1: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक, द बिग थ्रिल विद मानसी, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
7: Hello, hi, good evening to you. Big 106.2 पे उज्जवल खन्ना के साथ हैं आप। Very quickly traffic update, शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पे हैं, तो वहाँ पे आपको क्रॉस 15-20 मिनट्स का आपको डिले मिलेगा, एंड मोहसिना के आसपास है ट्रैफिक, आपको वहाँ पे भी मिलेगा। अलवरका के आसपास है ट्रैफिक, इज स्लो मूविंग, अबाउट 10 मिनट्स का डिले आपको मिलेगा। रासिल खोर रोड पे है, and if you're a Dubai bound, then D68 is delayed, say about 10 minutes. Alkuz Industrial Area 1 ke aas paas aapko thoda sa traffic milne wala hai. Moving on to Walbarsha 1, thoda sa traffic milega wahan pe bhi. Satwa ke aas paas aapko traffic milne wala hai. So more or less, I think it's a moving traffic right now. It's not like as jam-packed as it is. Airport Street, D89 pe aapko kaafi lamba jam milega, say about 15 minutes ke delay. Any the obstruction, you can text us on 4305, which is 4305. Atif Aslam ke baaz, right after two songs, I'll come back and announce the name of the winner, who takes away these Opal couple in whites. Ujjwal Khanna ke saath on Big 106.2.
1: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
8: Tum samajhte kyun nahi ki agar main tumhare saath 2 minute aur rahi to mujhe tumse pyar ho jayega phir se.
1: Ye hai Ujjwal on the Big Life, only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

0: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
1: Fast track song of the hour, brought to you by Self Drive. आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज़, the track is तेरी मेरी कहानी. कितनी सारी कहानियाँ चली, कितनी सारी बातें हुई साइकिल पे. आज वर्ल्ड साइकिल डे है एंड आज एक मौका भी है आपको जीतने का. ये ओपन कपल इनवाइट उज्जवल खन्ना के साथ. दिस इज द बिग लाइफ.
0: द बिग लाइफ विद उज्जवल ऑन बिग 106.2. The beat of Bollywood.
1: And a very simple question is what I asked. वो मैं थोड़ी देर में पूछूंगा आपसे सवाल. फिर से दोहराऊंगा सवाल. राधा टेलीफोन लाइन पे मेरे साथ है मुपिंदर. हाय मुपिंदर, गुड इवनिंग.
2: हाय गुड इवनिंग, हाउ आर यू?
1: गुड मुपिंदर, तुसी पंजाबी हो?
2: जी हां जी, मुपिंदर सिंह पूरा नाम
1: है. हां जी, किद्दा फेर की चल रहा है?
2: जी एकदम बढ़िया, चढ़दी कला सब ठीक ठाक.
1: की करते तुसी मुपिंदर
2: जी? मैं बैंक में काम करता हूं जी. एक
1: अच्छा बैंक से काम करते हो? अच्छा अच्छा ठीक है. तो हुन की हो रहा है? आर यू कमिंग आउट ऑफ द बैंक, यू गोइंग टू द बैंक? काम खत्म हो गया आपका, क्या हो रहा है?
2: जी आई एम जस्ट ऑफ द डे नाउ.
1: अच्छा ऑफ द डे. अच्छा कितना टाइम हो गया थानू थे दुबई से? कितना टाइम हो गया
2: दुबई? 20 इयर्स नाउ.
1: ओ 20 साल हो गए थानू. ओ जी अच्छा, कितने दिन? वेयर यू स्टे इन दुबई?
2: I stay in the Demac Hills too. हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया है. वेरी गुड इंडियन कम्युनिटी, वी हैव लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज आल्सो ओवर देयर.
1: अच्छा अच्छा, क्योंकि जेड़े बंदे हैगे ने डिमैक टूर जो क्या हमेशा कहंदे ने किंदे यार एरिया तो बढ़िया है बट यू नो इट्स वेरी आइसोलेटेड. दैट्स व्हाट लॉट ऑफ पीपल हैव टोल्ड मी.
2: या इट इज आइसोलेटेड बट वंस यू आर इनसाइड
1: या
2: यू आर वेरी काम क्वाइट अवे फ्रॉम ट्रैफिक ग्रीनरी साइड.
1: So, फिर
2: डिमैक हिल्स हैज देयर ओन
1: स्विमिंग पूल. ओके फैंटास्टिक. सो हाउ लॉन्ग इज डिमैक टू देन फ्रॉम एनी ऑफ द थिएटर दैट यू गो टू, एनी सिनेमा दैट यू गो टू? दुबई मॉल वुड बी क्लोजेस्ट.
2: मॉल ऑफ एमिरेट्स इज द क्लोजेस्ट.
1: मॉल ऑफ द एमिरेट्स इज द क्लोजेस्ट फॉर डिमैक हिल्स टू. हां हां हां, सही गाला. ठीक है ठीक है ठीक है. एक्चुअली दुबई हिल्स भी क्लोज होएगा ना डिमैक हिल्स टू?
2: हां दुबई हिल्स मॉल राइट.
1: हां यस यस यस. दुबई मॉल जाओ या फिर दुबई हिल्स मॉल जाओ, ये टिकटां तुहाडी होईयां. सिंगर कंग्रेचुलेशंस. एक दो डेज़ चे तुहानू यू नो गेट अ कॉल फ्रॉम आवर एडमिन टीम एंड यू कैन कलेक्ट योर टिकट्स हेंसफोर्थ. ओके
2: ओके जी,
1: चलो जी, थैंक यू वेरी मच. बाय बाय जी.

0: Pritham Arijit Singh, Shashwat Singh, KE Vocals. Time for me to get out of the studio. And I will ask Mansi to step in with the big drive. And of course, keep listening to us.
1: The Big Life with Ujjwal on Big 106.2. The beat of Bollywood.
0: On Big 106.2, Mansi is in the studio. And of course, ye leke aayegi bahut badhiya khabar. Aur badhiya khabar mein sabse badhiya ki chuttiyan nikle hain. अभी देखो कितने लालची लोग हैं हम, मतलब हम रुकते ही नहीं है मानसी, है ना?
2: हम छुट्टियों के लिए तो जीते हैं.
0: मुझे लगता है पूरा देश छुट्टियों के लिए जीता है.
2: I swear.
0: मतलब अभी मस्ता हमें 6 दिन की छुट्टी आए हुए, 4 दिन भी नहीं हुए और हम फिर से खुशियां मना रहे हैं कि हमें सोमवार की छुट्टी फिर भी मिल गई है.
2: छोटी छोटी खुशियां, इस साल यही खुशियां हैं हमारी.
0: ये बात तो सही है. अच्छा लगा मुझे एनक्रिप्टेड पोस्ट तेरा. और इनक्रिप्शन के अलावा क्या क्या हो रहा है तेरे शो में? व्हाट इज हैपनिंग?
2: सी, टू स्टार्ट विद टिकट्स हैं, बिकॉज अब वीकेंड भी आने वाला है, एक लॉन्ग वीकेंड और आने वाला है. सम ब्रिलियंट मूवीज कमिंग इन.
0: The
2: lineup is amazing, especially for June.
0: Yes, absolutely.
2: Which one are you most excited about? Cocktail 2.
0: Right now, I'm excited about Bandar.
2: Oh yes.
0: Right now, that's the film that I really want to watch. And Anurag Kashyap risk ले रहे हैं वो बड़े theater के साथ release कर picture.
2: After a long time.
0: खाले क्योंकि उनको ये पता है कि उनकी picture हर कोई देखने नहीं जाएगा. लेकिन you know, we are Anurag Kashyap fans. We understand the salt of cinema. So let's see what happens.
2: हमारी ज़िंदगी Anurag Kashyap की film हो चुकी है.
0: फिलहाल अगर ऐसी आपकी भी जिंदगी तो उसको थोड़ा सा चटपटा बनाइए. मानसी के साथ she comes in and she walks in about 5 minutes from now with the big thrill on Big 106.2. Keep following us on our Instagram. We are by the name of 106.2 Big FM. God bless you and your family. Stay safe, drive safe, keep praying for the region. Most importantly, keep praying for your family and friends. That's very, very, very important. I'm taking your leave. Follow me personally as well. MJUJWAL KHANNA is my Instagram handle. Okay, bye for now. Again, take this away. Strings.

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: Good evening. This is the Big Thrill. Mansi. Very thrilling, very exciting news. Yeah, ke ek aur chutti bahut jald aane wali hai. A long weekend is just a few weeks away. Filhal all set to keep you company until 9. Mansi, we've got so much happening. Asham, to start with, open movie tickets jeetne ka mauka. We'll play the 5-second rule. रूल से याद आया, इफ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर के हाय गाइस, मैं एयरपोर्ट पे हूं, अभी मैंने कॉफी पी है, तो अब ये करना थोड़ा बंद करना पड़ेगा. आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट यू कैन एक्चुअली डू एंड नॉट डू एट द एयरपोर्ट. आई एम टॉकिंग अबाउट फिल्मिंग ऑल ऑफ दैट विद सम फैंटास्टिक म्यूजिक. किक स्टार्टिंग द शो विद
2: लेडीज एंड जेंटलमैन. यू आर नॉट रेडी फॉर दिस.

0: Market.ae. Over 15 years, I have stood by the UAE. I may sound a little fresher now, but I am still the same Alfred you love.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening, yeah, Big Thrill, Mansi. While you enjoying the music, I saw the trailer of Bandar. अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये movie अगर release होती है तो बहुत सारे cuts के साथ यहाँ पे release होगी. So Anurag Kashyap की movie है. So we know what's gonna happen. But looks amazing. Bobby Deol का जो comeback हुआ है, मैं चाह रही हूँ ऊपर वाले मेरा भी ऐसा ही comeback हो. फिलहाल आश्राम एक बड़ी अच्छी research जो मैंने पढ़ी. And research ये कहती है कि बहुत पुरानी research है. I think ये बहुत established Bollywood में भी हो चुका है. कि लड़कों को लड़कियां लंबे बालों में ही अच्छी लगती है. बहुत कम ऐसे बंदे होते हैं जिन्हें लड़कियों के छोटे कटे हुए बाल पसंद हैं. अब इसके पीछे बहुत सारी साइकोलॉजी एंड बहुत सारा साइंस भी बैकअप किया गया है. आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स बट आई वांट टू आस्क द मेन आउट देयर एंड ऑल्सो द वुमेन बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ वुमेन इंक्लूडिंग माई सेल्फ. जैसे ही बाल हमारे लंबे होते हैं हमारा दिल करता है कि इसे छोटे कर लें. बट अगर आपकी ज़िंदगी में आपके बॉयफ्रेंड्स हैं या हस्बैंड हैं तो वो बोलते होंगे कि नहीं यार लंबे बालों में जो तू लगती है वो छोटे बालों में नहीं लगती. और हाँ ही वहीं पर हम लड़कियाँ पिघल जाती हैं. बट माई क्वेश्चन हियर इज़ दिस रिसर्च ट्रू? डू यू गाइज रियली लाइक वुमेन विद लॉन्ग हेयर? अब शाहरुख खान ने भी कुछ कुछ होता है हमें काजोल को उस नज़र से तब देखा था जब उसके बाल लंबे हो गए थे. और यू आर समवन हु लाइक्स वुमेन विद शॉर्ट हेयर एंड एज अ गर्ल एज अ महिला जो मुझे इस वक्त सुन रही है, क्या आपने अपने बाल कभी सिर्फ किसी के कहने पे कि तुम लंबे बालों में अच्छी लगती हो लंबे किए हैं? Let me know on 800-1062. We're also playing the 5-second rule. It's a fun game. आपको मिलते हैं 5 सेकंड. मैं आपको देती हूँ कुछ कैटेगरीज. तीन चीजें बतानी होती है 5 सेकंड के अंदर. It sounds very very easy, but ये इतना आसान है नहीं.
1: 5-second rule.
3: Oh yeah.
2: अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये तो मैं कर लूंगा, इट इज वेरी सिंपल, देन गिव इट अ ट्राई. 800-1062 पर. व्हाइल यू आर एट इट, वी हैव गॉट नेहा कक्कड़ की आवाज राइट हियर ऑन पिक 106.2 पार्ट ऑफ फॉर एशिया नेटवर्क.

0: मिलाने और जमीन बाहर पसारे बोल रही थी कि हाउस मार्क कि तू मुझे मिला नहीं। ऐसा लगा था जैसे प्रिया के प्यार का पैराशूट भी स्लोली स्लोली स्लोली।
1: बिग 106.2

0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable with Nancy on Big 106.2. 899 dirhams Bollywood.
1: अगर आपने खेलना है तो 5 सेकंड के अंदर जवाब देने के लिए तैयार हो जाओ. 800-1062 इज द नंबर डायल. ऑल्सो मेरा सवाल आज ये है कि मैंने एक रिसर्च पढ़ी है एंड काफी लड़कों से मैंने ये सुना भी है कि लंबे बालों से जो है लड़के इम्प्रेस हो जाते हैं. दे फाइंड लॉन्ग हेयर very very attractive. I'm sure you've also had men in your life. आपके boyfriend, आपके husband ने बोला होगा कि यार बाल लंबे कर ले अच्छी लगेगी या बाल मत कटाना. ये Bollywood ने हमारे दिमाग में ये जो science age logic है ये feed किया है क्योंकि वो slow motion पे जब heroine के लंबे जुल्फे जो है वो लहराती हैं वहीं के वहीं hero flat हो जाता है. तो I think ये वहाँ से शुरू होती है. शाहरुख खान की कोई भी movie देख लो उसमें heroine के बाल लंबे होंगे and जब वो पलटेगी तो वो जुल्फे उड़ेंगी. But my question here is, I want to see, is there any man out there who likes short hair on women? Because lambe baal maintain karna is not very very easy. Kam se kam ek gata hai and bahut lamba ek process hai. And there are times, you know, as women we feel like cutting our hair, it's very very liberating, it's a different confidence altogether. But I was once in a relationship, I wanted to cut my hair. I didn't do it because my then boyfriend really liked mere lambe baal. So, I want to know, is this true? You like women with lambe baal or you okay with, dating women jinke baal chote honge? Ya phir agar aap fellow ladki hain jo sun rahi hain, kisi ke प्यार में किसी के कहने पे आपने अपने बाल लंबे किए हैं. 800-1062 is the number to dial while you're at it. I'm going to take you to early 2000s.

0: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: A movie जिसने सारे business records तोड़ तार दिए from Dhurandhar 2, which reminds me, अगर आपने भी अपना business शुरू करना है, we're halfway there. It's almost आधा 2026, that's over. It's never too late. You can get in touch with Ajman Free Zone Authority right now. They've introduced the one-click business license. Great news for all those who wish to open their small or medium-sized enterprise. अब आप ये कर सकते हैं without any delay. With a fee starting from 5,555 dirhams to get your business license. All you need is a business idea. बाकी they'll take care of the rest, including your visa, your bank requirements. A very quick, completely digitized process. TNCs do apply. So to get your one-click license, any more information, visit कीजिए afz.ae. And over the long weekend, मैंने revisit करी फिदा. इतनी underrated movie है और फरदीन खान. Oof, oof, oof.
2: मैंने जिसको चाहा मिल गया.
1: क्या गाना था? मतलब मौका मिले आज घर जाके इसका सिर्फ वीडियो देखना. और ये दुबई में शूट हुआ है गाना, बाय द वे, कमिंग अप इन जस्ट अ बिट. आल्सो वी प्लेइंग द 5 सेकंड रूल. अगर आपने खेलना है, एक ही रूल है, 800-1062 पे कॉल करना.
0: बिग 106.2.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, GoChat के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। GoChat ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। Big 106.2

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, yeah, Big Thrill Mansi. And right now joining us is Zahira. Itna khubsurat naam, Zahira. ये शर्मा गई हो तारीफ में कि गायब हो गई हो?
2: अच्छा मैं
1: ज़हेरा, आई एम गुड, हाउ आर यू?
2: आई एम गुड, आई एम डूइंग गुड.
1: Are you home? You're on your way? You're stuck in traffic?
2: I am on my way to work, actually.
1: Hey?
2: Yeah, I'm a physiotherapist.
1: पहली बात तो ना, मैं जोरदार तालियां बजाना चाहूंगी फिजियोथेरेपिस्ट के लिए. मुझे ठीक फिजियोथेरेपिस्ट ने किया है. मतलब the kind of work you guys do with such detailing and with so much patience, hats off.
2: Thank you so much.
1: Very, very impressed. मतलब life में पहली बार, and I hope आगे ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, मैंने physiotherapy ली थी for almost 3 months and I'll be forever indebted and grateful to physiotherapists.
2: Great.
1: फिलहाल ज़हेरा, जब तक आप जा रही हैं अपने पेशेंट के पास, मैंने एक सवाल पूछा है. इनफैक्ट एक रिसर्च ही है कि लड़कों को लंबे बाल वाली लड़कियां अट्रैक्टिव लगती हैं.
2: I had very long hair before marriage, but now due to workload and घर
1: वाले. यार मैंने सुना शादी के बाद बंदों के बाल झड़ते हैं, ये लड़कियों के बाल क्यों झड़ रहे हैं?
2: No, it's not with that. Because I was living in Dubai pre-marriage. Now I have moved to Abu Dhabi. So it's a difference between water also and other things also which have impacted my hair. But yes, my husband does say that baal achhe lagte hain, dabbe baal, mat katao.
1: So kabhi aisa man kiya, Zahira, that you want to just chop your hair off? You wanted to just try a new style,
2: nahi? No, never.
1: Because he likes it.
2: No, I love my hair too.
1: अच्छा. लंबे बालों में ना फायदा और नुकसान दोनों है. फायदा ये है कि आप 4-5 दिन बाल नहीं धो, यू कैन जस्ट पुट इट अप इन अ बन. एंड नुकसान ये है, जिस दिन आप बाल धो उस दिन 2 घंटे निकालने पड़ते हैं.
2: Exactly, yeah, that is it. It's a very big process.
1: Yeah.
2: It's a very big process.
1: I remember there was a guy who used to love my long hair. And फिर जब मेरा उससे ब्रेकअप हो गया, मैंने पहली चीज पता है क्या की थी? अपने बाल कटवा लिए थे. Why sad? जो उसको अच्छा लगता था वो मैं कुछ नहीं करूंगी, तो वो वाला फेस था मेरा. Anyways, ब्रेकअप के बाद लड़कियां सबसे पहले या तो बाल रेड कराती हैं. अगर किसी लड़की के बाल लाल हैं तो समझ जाओ कि ताज़ा ताज़ा ब्रेकअप हुआ है. She is in her bad era. I've been there. मेरे इतने ब्रेकअप. आपके नहीं हुए कभी ब्रेकअप लाइफ में? वेरी नाइस, काला टीका लगाओ. और मैं कह रही हूँ कि अगर ये बंदा बोलता है कि कभी बालों में आप कंघी भी ना करो तो मत करना, क्योंकि ऐसे लड़के बहुत कम मिलते हैं आजकल. Yeah, next time you see a girl with red hair and short hair, you know what she's going through. मैं कुछ भी रिसर्च लेकर आती हूँ, पर ये सच है. मेरे साथ तो यही हुआ था. फिलहाल कहाँ जा रहे हो? Where are you going?
2: I am going towards Khalifa City now.
1: बट ऐसे कोई पेशेंट्स मिलते हैं जो परेशान करते हैं? मैंने बिल्कुल परेशान नहीं करा था अपनी फिजियोथेरेपिस्ट को. मैं तो उसे कस्टर्ड भी खिलाती थी.
2: Hardly, I get once in a blue moon sometimes. When patients are in too much pain, वो लोग पूरा रात में भी calls करके पूछते हैं. And it is actually, you should be ready for that. क्योंकि when you have dedicated your life towards this career, you have to be ready to solve their issues anytime and everywhere.
1: I am the very impressed with your physiotherapist community. मतलब मुझे तो आज से पहले पता भी नहीं था. And कितनी help होती है, especially जब आप recover कर रहे हो from a back injury.
2: Exactly.
1: Physiotherapist is that one person who can help you do that and very effortlessly. They are with you, they guide you. वो आपको इतना, you know, motivate करते हैं. So जोरदार तालियां सभी physiotherapists के लिए. You have a great evening and thank you so much for calling.
2: Sure.
1: चलो bye.
2: Take care. Have a great evening.
1: You too, love. Bye.

0: चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: बिग 106.2

0: ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है? क्यों ही? तेरे बाप का माल है?
1: ठीक है माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाना?
2: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening. This is The Big Thrill. Mansi, and yahan par was your chance to win open movie tickets to go and watch any movie that you feel like. And right now on the phone lines, we've got Girish. Hi, Girish.
2: Hello, Mansi.
1: इतनी अच्छी आवाज है ना आपकी, रुक जाओ मुझे पानी पीने दो, गर्मी बढ़ गई स्टूडियो में, एक सेकेंड. सच्ची में बहुत अच्छी आवाज है आपकी.
2: थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट.
1: हाय, ये सबसे आप ऐसी बैरिटोन में बात करते हो कि आज कुछ स्पेशल है?
2: नॉर्मली इट डज नॉट साउंड सो ग्रेट इन पर्सन, बट ओवर द फोन मे बी अ स्लाइटली बेटर.
1: लड़कियां नहीं, मैं आपसे पढ़ जाती होंगी ना फोन पर ही, हेलो पे ही.
2: No, of course not.
1: Why? मैं तो पढ़
2: रही हूँ.
1: आपने जैसे हेलो बोला, मेरे दिल से ही आवाज निकल रही थी.
2: Okay, I would take that as a compliment.
1: सुना है गाना आपने?
2: Yes,
1: तेरे लिए दिल का टेलीफोन बजे रिंग रिंग रिंग रिंग. When was the last time you got a compliment on your voice from a girl?
2: Nah, it's been a very long time actually. I've forgotten.
1: Now you just keep calling me and I'll keep listening to you and I'll keep complimenting you.
2: Very sweet.
1: What's up, Girish? Are you home? Are you still in traffic? Kya aapko aaj raat ko neend aayegi?
2: No.
1: Nahi, batao kahan ja rahe ho?
2: Just escaping traffic, maybe about 5 minutes away from home.
1: Oh, very nice. So where is home?
2: Yes. Home is in Gises.
1: Oh, that's too far. तो मैं आपको वहाँ पे मिलने नहीं आ पाऊँगी. तो आप इसी तरफ आना. फिलहाल I played you a गाना here and I asked you to guess कि ये गाना था कौन सा.
2: The song was from Gupt.
1: Absolutely. The title track. Do you remember the song?
2: Yes.
1: Gupt, Gupt, Gupt क्या है? देखी ही movie आपने?
2: Yes, it was one of the most amazing movies at that time.
1: I know, what a thriller, you know? Right? Yeah. Kajol, Manish and Bobby Deol. Are you a fan of thrillers?
2: Yes, definitely.
1: So are you looking forward to Bandar? Have you seen the trailer? It's Bobby Deol's new movie.
2: No, I've not really. Actually, I got to hear, I know of it only when you were mentioning it just now.
1: If you want, you and I can go and watch the movie. I'm giving you 2 tickets anyway. बहुत हो गया, आपकी बीवी ना मुझे इतना मारेगी आज के लिए, बहुत हो गया.
2: I don't know about you, but I need to get back home.
1: वही मैंने बोला, मैं बहुत डांट खाने वाली हूँ. Congratulations, Girish. Open movie tickets all yours. So go and enjoy any movie that you feel like. Some brilliant lineup and. है जवानी तो इश्क होना है, वो भी आप देख सकते हैं क्योंकि उसमें वो एक साथ दो दो संभाल रहे हैं. जस्ट सेइंग. चलो बाय, हैव अ ग्रेट इवनिंग.
2: थैंक यू वेरी मच. यू टू. बाय बाय.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। 106.2

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: बॉयज, मेरे साथ प्रॉम जाने के लिए तुम सबको तीन डिपार्टमेंट्स में ब्रिलियंट होना चाहिए, एंड दैट इज गुड लुक्स एंड गुड लुक्स।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। The Big Mix, weekdays 10 a.m. to 2 p.m. only on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae.
2: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
1: Big 106.2.

0: insurersmarket.ae. Over 15 years, I have stood by the UAE. I may sound a little fresher now, but I am still the same Alfred you love.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: अभी अभी मेरी मम्मी का मैसेज आया है. मैंने ना अपने फैमिली ग्रुप को म्यूट कर रखा है, लाइक मोस्ट ऑफ यू. एंड मेरी मम्मी ने बोला है, मेरी एक मासी है, आई विल नॉट नेम रिश्तेदार्स हियर, आई डोंट वांट टू मेक देम ऑकवर्ड एंड फेमस, बट या सो मेरी मासी की एक बेटी है, इसकी शादी हुई है इन द यूके. एंड मम्मी मुझे बता रही है कि उसने वहाँ पे लसूड़े का अचार बनाकर बेचना शुरू कर दिया है. ओनली पंजाबीज एंड पीपल फ्रॉम द नॉर्थ वुड नो व्हाट लसूड़ा इज. इट इज़ अ वेरी यमी यमी थिंग. जब अचार बन जाता है उसका बड़ा स्वाद होता है. तो मुझे मम्मी ज्ञान दे रही है कि देखो उसने अपना बिजनेस शुरू कर दिया. एंड मैं ये ज्ञान ले रही हूँ, ऑफकोर्स आई विल नेवर मेक लसूड़े का अचार, बट आई डोंट माइंड स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस. अगर आप भी काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं कि यार अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए, देन नाउ इज द टाइम. गेट इन टच विद अजमान फ्रीजन अथॉरिटी. दे इंट्रोड्यूस द वन क्लिक बिजनेस लाइसेंस. ग्रेट न्यूज फॉर ऑल दोज हु विश टू ओपन देयर स्मॉल या मीडियम साइज एंटरप्राइज विद अ फी स्टार्टिंग फ्रॉम 5,555 दिरहम्स. To get your business license, all you need is a business idea. That's it. Baki, they'll take care of everything, including your visa, your bank requirements. Bahut hi quick, completely digitized process hai. TNCs do apply to get your one-click license. Any further information, visit afz.ae. Flala. Playing you early 2000s se, in fact, iska jo नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आने वाला था बहुत कंट्रोवर्सी में आ चुका है, थैंक्स टू फरहान अख्तर एंड रणवीर सिंह, क्योंकि रणवीर सिंह ने डॉन में काम करने से मना कर दिया था. देयर इज अ बैन शैन गोइंग ऑन, बट फिलहाल आई एम गोना टेक यू टू द डॉन दैट वी लव वॉचिंग. शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, ईशा कोप्पिकर.

सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द बिग मिक्स वीकडेज 10 AM to 2 PM ओनली ऑन बिग 106.2 ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae. Some nights need no words, just the right vibe. Sink into the big chill. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द बिग जेल ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae
1: insurancemarket.ae
0: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड